FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अप्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले करें देश वंदना समूह स्वर में।

0: सुमित टोप्पो के गाए इस भजन के साथ ही आज की आराधना अब हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए खेती की बात में सुनिए, गर्मी में पशुधन की सुरक्षा, इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह क्षत्री का।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, जैसन कि हमन जानाथन हमर देश भारत एक कृषि प्रधान देश आए और कृषि में पशुधन के बहुत महत्व है। ये बेरा जौन प्रचंड गर्मी है, ये मौसम में पशुधन के देखभाल बहुत जरूरी है। गाय है, भैंसी है, बकरी है, ये मल्ला चिलचिला धूप में धूप लू और हीट स्ट्रेस ले बचाना बहुत जरूरी है। उखर बेहतर स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन ला बनाए रखे बर पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी, हवादार छायादार जगह, हरा चारा और समय में टीका के विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये चिलचिलावत प्रचंड घाम में पशु ला खासकर भैंसी भैंसा है, ये मल्ला बिहनिया 10 बजे के बाद चरे भर नहीं ढीलना है और चरे भर ढीला है बिहनिया तो 10 बजे तक के घर ले आना है और संझा बेरा 4 बजे के बाद ढीलना है। काबर के ये जौन भैंसी भैंसा हवे हैं ये मतलब पानी में बोरना बहुत जरूरी थे, डुबाना नहलाना जरूरी रही थे, तो समय के विशेष ध्यान रखना है 10 बजे के पहली और शाम कन 4 बजे के बाद। संगे संग पशु मल्ला सीधा धूप ले बचाए बर उमल्ला खपरेल पक्का सेड या फिर घना पेड़ के छाँव में बांधे के व्यवस्था करना चाहिए। गौशाला है उला हवादार होना चाहिए, संभव हो तो जिसे पंखा है कूलर है एकर व्यवस्था हो जाए तो और बहुत अच्छा है। सेड के चारों मुड़ा बोरा है, फट्टी है, ओला लटका के ओमा पानी के छिड़काव करके तको तापमान ला बहुत तक कम करे जा सकत है। पशु मन जिन फर्श में बैठते वो पक्का है रहे और बढ़िया साफ सुथरा रहे, नमी चिखला माटी ओम मत रहे, जेखर ले मंगसा माछी एकर खतरा तको ले बाछी। बीच बीच में फिनाइल में नीम के पत्ता वाले पानी में फर्शला धो देना बहुत जरूरी है। ये गर्मी में संगवारी हो, पशु मननला पिए भर साफ पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। पशु मन गर्मी के कारण 2 गुना पानी पीते, पानी में हो सके तो जौन पानी भरे के कोटना है, टब है,

0: पशु के पानी पिए के जोन कोटना है वो कहो सीमेंट के बने हैं तो कोटना के भीतरी पारला जेमा पानी भराते वाला बढ़िया हफ्ता में कम एक पैत चूना में पोताई कर दो। एखर ले पानी साफ रही, पानी ठंडा रही और पशु मल्ला कैल्शियम घला पर्याप्त मात्रा में पानी के माध्यम ले मिल ही। लू से पशु मल्ला बचाए बर पानी में बीच बीच में नमक है, गुड़ है, ये जरूर मिला के पिलाना चाहिए जेखर ले उखर में पानी के कमी नहीं हो है और ऊर्जा बने रही। गर्मी में विशेषकर पशु मन के संतुलित आहार की व्यवस्था करना जरूरी है। गर्मी में भूख कम लगते संगी हो पशु मन ला बिहनिया बेरा और रात के समय ठंडा चारा जरूर खिलाना चाहिए। गर्मी ल देखत हरियर चारा की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और हरियर चारा के संग मिनरल मिक्सचर के सही मात्रा बना के रखना है ताकि दूध के जो गुणवत्ता है वो प्रभावित मत हो। हीट स्ट्रोक के कोह लक्षण है जैसे कि पशु हाँफत है, जीभ बाहर निकालत है या बहुत ज़्यादा लार टपकत है तो समझ जाओ कि पशु ला हीट स्ट्रोक लू लग गए है। ऐसे स्थिति में तुरंत उमला ठंडा जगह में लेके जाना है और अपन पड़ोस के पशु चिकित्सालय में संपर्क करके जो पशु चिकित्सक है ओका जरूर दिखाना है। संगे संग खुरपका मुंह पका जैसन जो बीमारी है एखर ले बाँचे बर चिकित्सक के सलाह ले समय में पशुधन ला टीका जरूर लगवाना है। ये तो रही से गर्मी में पशुधन के देखभाल। राम राम, जय जोहार।
1: गर्मी में पशुधन की सुरक्षा, इस विषय पर जानकारी अभी आपने सुनी खेती की बात में, वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह के, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

रामचरितमानस गाना भी आपने सुना, मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह का और साथ में थी मिताली बी सिंह और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है और अब आइए नव विहान के अंतर्गत चर्चा करें अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन की।

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख शहरी विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे कि हर घर में जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, पार्क और हरित क्षेत्रों का विकास, इन सभी को सुनिश्चित करना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसके मुख्य लक्ष्य की बात करें तो जल की सार्वभौमिक कवरेज, हर घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से पर्याप्त और सुनिश्चित जल आपूर्ति प्रदान करना, सीवरेज और मल जल प्रबंधन, शहरों में सीवरेज नेटवर्क, अपशिष्ट जल शोधन और पुनः उपयोग की व्यवस्था करना, हरित क्षेत्रों का विकास, पार्कों और सुव्यवस्थित खुले स्थानों को विकसित करके शहरों के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण को बेहतर बनाना और प्रदूषण नियंत्रण, गैर मोटर चालित परिवहन जैसे कि पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए ट्रैक और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। और यह योजना सभी

भी शहरी स्थानीय निकायों और शहरों में देश को जल सुरक्षित बनाने के लिए लागू की गई। इसके तहत कई शहर और कस्बे इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें शहर जल संतुलन योजना, सिटी वाटर बैलेंस प्लान, जल निकायों के पुनरुद्धार, रिजुनवेशन ऑफ वाटर बॉडीज और उपचारित सीवरेज के पुनर्चक्रण पर विशेष जोर दिया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर फंड का योगदान करती हैं। केंद्र सरकार का हिस्सा शहरों की आबादी के आधार पर तय होता है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50%, 1 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में 33.33% और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 25%। शहर स्तरीय SLIP के निर्माण, जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, जल निकासी व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं, उपलब्ध डिजिटल और इंटरनेट सुविधाएं, औद्योगिक सुविधाएं जैसी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में अस्पष्टताओं के सावधानी पूर्वक आकलन के आधार पर इसकी पात्रता तय की जाती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें सभी शहरी घरों को जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन प्रदान किया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी चर्चा अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के संबंध में।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज सुबह ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर। यादों के झरोखे से कार्यक्रम सुबह 7:30 पर और कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद सुनिएगा सुबह 10:00। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई। आज के कलाकार होंगे आसना उग्रे, विज्ञान निधि उग्रे, रामायण वस्त्रकार और अनुपमा मिश्रा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:00 से 9:55 तक, फिर सुबह के 11:30 से 11:55 तक, फिर दिन के 12:00 से शाम के 5:00 तक और फिर रात के 9:15 से रात के 11:00 तक। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुबह 11:00 और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00 प्रसारित किए जाएंगे। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:20 पर और शाम के 7:00। रजनीगंधा कार्यक्रम रात 8:15 पर और सुगम संगीत रात 8:00 सुनिएगा। सुगम संगीत में कलाकार होंगे भूपेन हजारिका। शाम 5:35 पर युवा जगत में आज की बात का विषय होगा विश्व मधुमक्खी दिवस और साथ ही सुनिएगा युवा पसंद और सवाल जवाब। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोट का विषय होगा परागण और उत्पादन वृद्धि। शाम 5:05 पर समन्वय साहित्य परिवार छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा आयोजित डॉ. पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग की रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा। कार्यक्रम प्रस्तुति डॉ. सुप्रिया भारतीयन की और रिकॉर्डिंग सहयोग होगा महावीर बरका का।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः भारतं तथा नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड फिनलैंड डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक सन्ध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप्तः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य

0: दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 शताधिक 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-प्रति-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं।

0: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

मित्रों नमस्कार। आज का दिन विशेष है हम सभी के लिए, खासकर आकाशवाणी बिलासपुर से जुड़े पूरे परिवार के लिए, क्योंकि आज सड़क पर एक जैसी टी शर्ट और टोपी धारण किए हम सभी वॉकेथॉन करते हुए जश्न मना रहे हैं आकाशवाणी द्वारा राष्ट्र को दी गई अपनी प्रसारण सेवाओं के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। जी हाँ, वॉकेथॉन में भाग ले रहे हमारे सभी साथियों को बधाइयाँ। देश भर में रैली, वॉकेथॉन और मैराथन के आयोजन किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है जनता के साथ जुड़ाव बढ़ाना, लोगों को फिटनेस के लिए और मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए यानी राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित करना। आज आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा आयोजित वॉकेथॉन में यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ के कार्यक्रम पेशकर्ता, श्रोता और कईयों के तो परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं। सभी को एकजुट कर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मूल मंत्र को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है इस जुड़ाव के जरिए। मित्रों, आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्थान ही नहीं है, बल्कि ये पूरे देश को जोड़ने वाली कड़ी है, जो दूर दराज के इलाकों तक सूचना, कृषि, शिक्षा, मनोरंजन आदि पहुंचाकर हमारी सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार फिर से वॉकेथॉन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए चलिए सुनते हैं ये गाना।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: अब कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 310026310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07720772 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

मित्रों, आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे पारिस्थितिक तंत्र, कृषि और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों यानी पॉलिनेटर्स के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनकी रक्षा करना, उनके आवासों को संरक्षित करना और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, उनकी रक्षा के साथ साथ उनके आवास की भी को भी संरक्षित करना जरूरी है। इस वर्ष की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। हर वर्ष 20 मई को मनाने के लिए यही दिन चुना संयुक्त राष्ट्र ने, क्योंकि आज होता है एंटोना जानशा का जन्मदिन, जो है आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी, वे माने जाते हैं आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी। मित्रों, ये जानकर अचरज होगा कि हमारी खाद्य पूर्ति का लगभग 70% हिस्सा परागण के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणक पर निर्भर करता है। इसलिए इन परागणकों की सहायता के लिए हम अपने आसपास फल फूल या सब्जियों के पौधे ज़रूर लगाएं और साथ ही यह ख्याल रखें कि कीटनाशकों का उपयोग नियमानुसार हो, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हो। और चलिए अब सुनते हैं एक गाना।

0: और अब आइए सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: व्यवस्था पर आधारित आकाशवाणी बिलासपुर का दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ मनोरंजन, देश विदेश के समाचारों के साथ साथ समसामयिक विषयों की जानकारी का सशक्त प्राचीन माध्यम आकाशवाणी अपना 9 दशक पूर्ण कर चुका है। जन जन की वाणी आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज आकाशवाणी परिसर बिलासपुर से एक विशाल वाकाथान का आयोजन किया गया है। आज प्रातः ठीक 7 बजे बिलासपुर जिले के सम्माननीय जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजय अग्रवाल जी एवं बिलासपुर जिले के आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर वाकाथान रवाना किया जाएगा। वाकाथान आकाशवाणी पर से नूतन कॉलोनी सरकंडा से चलकर नूतन चौक, सीपत चौक, मुक्तिधाम तिराहा से वापस आकाशवाणी परिसर पहुंचकर संपन्न होगा। पदयात्रा के सभी सदस्य ध्यान दें, यद्यपि इस समय यातायात का दबाव नहीं होता है, फिर भी सड़क के एक किनारे चलें, कतार में चलें। मित्रों, आज ही बिलासपुर जिला के औषधि विक्रेता संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहर में बाइक रैली निकाले जाने की योजना है। आज प्रातः 11 बजे मेडिकल कॉम्प्लेक्स तेलीपारा से

0: बाइक रैली चलकर पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, सीएमडी चौक, तारबहार, रेलवे कॉलोनी, तोरवा पावर हाउस, दयालबंद, गांधी चौक, गोल बाजार, देवकी नंदन चौक, सरकंडा, नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। रैली के प्रस्तावित समय में शहर में सबसे अधिक यातायात का दबाव होता है, अतः रैली में चल रहे सभी दोपहिया वाहन चालक दो दो के जोड़े में तथा कतार में चलें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि रैली से आम यातायात या शासकीय कार्य किंचित मात्र भी प्रभावित न हो और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत करते समय मुख्य मार्ग में अनावश्यक जाम की स्थिति निर्मित न करें, क्योंकि माननीय जिला न्यायालय सहित बड़ी संख्या में यहाँ शासकीय कार्यालय स्थित हैं। बाइक रैली में दो पहिया में तीन सवारी न चलें और हेलमेट पहनकर ही चलें। साथियों, चौक चौराहों में लगी सिग्नल लाइट हम सभी की सुविधा के लिए है, इसका हम सभी को शत प्रतिशत पालन करना चाहिए, इसमें हमारी शान है। किंतु कुछ मनचले, शरारती या असामाजिक तत्व प्रायः रेड सिग्नल तोड़ते हुए औरों के लिए खतरा उत्पन्न करने में अपनी शान समझते हैं। सावधान, ऊपर वाला अर्थात कैमरा अपलक देख रहा है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे जी से।

मित्रों आइए अब याद करें राष्ट्रवादी लेखक वक्ता समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पॉल को। लाल बाल पाल, ये तिकड़ी, ये त्रिमूर्ति याद है ना? इनमें से एक जिन्होंने, लाल बाल पाल जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक विमर्श को ही बदल डाला था। भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माने जाते हैं बिपिन चंद्र पॉल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने 1887 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिपिन चंद्र पॉल ने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने की पुरजोर वकालत की और पूर्ण स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों पर आधारित एक नए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में इन्होंने मान्यता प्राप्त की। उनके कार्यक्रम में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा शामिल थी। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वदेशी नीतियों के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार और प्रोत्साहन किया था उन्होंने, और वे समाज से बुराइयों को दूर करना चाहते थे। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम हृदय से नमन करते हैं। और अब चलते चलते यही कहेंगे, सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से। कार्यक्रम का पहला गीत इश्क पर जोर नहीं, इस फिल्म का है। लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, SD बर्मन का।

0: ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की झरोखे से। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू ने, धुन तैयार की है ओपी नैयर ने, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की। फिल्म का नाम 12 o'clock।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: यादों के झरोखे से कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गीत है, रवि का संगीत है, फिल्म का नाम एक फूल दो माली।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू ने, ओपी नैयर का संगीत है, मिस्टर एंड मिसेस 55, ये है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में मजरूह का लिखा हुआ गाना। SD बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है बात एक रात की।

0: सुमन कल्याणपुर के गाए इस गीत के साथ ही यादों के झरोखे से कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
5: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान

0: श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
2: India is accelerating towards universal health coverage.
3: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
6: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था। और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विच

0: का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की

0: संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद हिज इटालियन काउंटरपार्ट जॉर्जिया मेलोनी इन रोम टुडे। टू लीडर्स टू डिस्कस वेज टू बूस्ट कोऑपरेशन ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रिव्यू जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू रोल आउट अन्नपूर्णा स्कीम प्रोवाइडिंग 3,000 रुपीज पर मंथ टू वीमेन एज 25 टू 60 ईयर्स फ्रॉम जून 1st। Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
1: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों

0: आसना उगरी, विज्ञान निधि उगरी और साथियों के स्वरों में ये गीत अभी आपने सुने। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

और अब कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 3100026310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07720772 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमराई। अब आइए सुनते हैं रामायण वस्त्रकार अनुपमा मिश्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत।

0: Latina.
1: रामायण वस्त्रकार अनुपमा मिश्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का अमराई कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजने वाले हैं अब से सुबह के 9:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और सुबह 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशा तिरुपति की आवाज में बी केयरफुल फिल्म का गाना, कुमार कहें बोल और सिद्धार्थ सुहास की है तर्ज़।

0: अभी आप सुन रहे थे बांके की क्रेजी बारात फिल्म का गाना। दोस्तों आज 20 मई है, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे। तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मधुमक्खियां प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फूलों से पराग एकत्र कर पौधों के परागण में सहायता करती हैं, जिससे फलों, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन बढ़ता है। और लेकिन दोस्तों आज प्रदूषण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है। ये चिंताजनक बात है ना? अतः हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, तभी मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी और हमारी खाद्य श्रृंखला भी सुरक्षित रहेगी। इस वर्ष की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इंग्लिश वो इंग्लिश फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।
1: नौराई माझी

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में जुग जुग जियो फिल्म का गाना। एक पारंपरिक रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशि और डीजे खुशी की आवाजों में लक्ष्मी फिल्म का गाना। गगन आहूजा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शशि और डीजे खुशी।

0: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। गीतकार हैं शबीर अहमद और तनिष्क बाग्ची, संगीतकार हैं तनिष्क बाग्ची। फिल्म का नाम जबड़िया जोड़ी।
1: वो तोहरी लचके जब कमरिया सारा जिला ही।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है, जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले लो।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलीयू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

नंदू कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद

0: की वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रूपये की जगह 550 रूपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर्स की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। प्रशासन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स और अन्य औषधि केंद्रों से दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है, वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी के बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकते हैं। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा आज सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के हेलो आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला।
2: मैं विजय कुमार गुप्ता राजेश कॉलोनी बिलासपुर से बोल रहा हूँ। आपकी पसंद में आपके सम्मिलित हो रहा हूँ।
1: कैसे हैं आप विजय जी?
2: मैं अच्छे हैं।
1: क्या करते हैं?
2: मैं रिटायर्ड बिजली ऑफिस कर्मचारी।

0: अच्छा, तो रिटायरमेंट की लाइफ का मजा ले रहे हैं अभी।
1: जी जी
0: तो क्या रहती है दिनचर्या आजकल? अच्छा,
1: दिनचर्या से मैं कुछ संस्था से जुड़ा हूँ, संस्थाओं से जुड़ा हूँ जो रसोई के रत्न धरोहर मंदिर मंदिर से कार्य करते थे, और साहित्यिक गतिविधियाँ, कवि सम्मेलन।
0: बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके।
1: जी जी
0: तो लिखने का शौक रखते हैं आप भी?
1: जी जी लिखने का शौक रखता हूँ, मैं रतनपुर तालाबों पे किताब लिखा हूँ।
0: अरे वाह, आज के परिवेश में सबको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि तालाब लगातार सूख रहे हैं या फिर उनकी देखभाल कम हो पा रही है आम जनता के द्वारा?
1: जल ही जीवन है, सभी लोग जानते हैं कि मैं रतनपुर तालाबों पर काम कर रहा हूँ। वहाँ पे किसी समय 1400 तालाब हुआ करते थे, अब मात्र 150 बचे हैं। तो सम्भ के कारण इंक्रोचमेंट, मतलब उसको व्यवस्थित कब्जा किए हैं लोग, और पानी के सोर्सों को रोक दिए हैं। गंदगी है, उसकी सफाई करना है, उस नागरिक को जाके हम लोग बताते हैं तालाबों के संरक्षण करो, पानी को बचाओ। तो पानी कैसे बचाया तो उसके बारे में बताते हैं, रेन हार्वेस्टिंग है, पिट बना के ये योजना उनको बताते हैं। और धरोहर की काम करती है रतनपुर के मंदिरों, पुराने किलों, धरोहरों को। तो आजकल एक केंद्र करके ज्ञान भारतम मिशन चल रहा है, जिसमें मैं कलेक्टर द्वारा समिति में मैं मेंबर भी होकर।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ पांडुलिपियां हैं वहाँ की ऐतिहासिक धार्मिक,
0: हाँ,
1: उसके लिए हम लोग सर्वे करके कलेक्टर कार्यालय को सूचित करते हैं। कुल मिलाकर रतनपुर हमारे केंद्रित पूरा काम करता है,
0: इस इतिहास को संजो रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है आप लोग के द्वारा। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बताइएगा?
1: उषा खन्ना द्वारा म्यूजिक सजाया हुआ है, फिल्म सौतन का जिंदगी एक पहेली भी है, एक गाना है,
0: जिंदगी प्यार का गीत है।
1: जी जी जी
0: आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: हेलो
1: हेलो,
0: कतिया पारा जूनो बिलासपुर से सुशील देवांगन बिलासपुरिया बोल रहा हूँ।
1: कैसे हैं सुशील जी?
0: बहुत बढ़िया हूँ पद्मा जी, आपकी दुआ है पद्मा जी।
1: बताइए,
0: बहुत दिन के बाद बात हो रहा है,
1: खुशी हो रही है?
0: बहुत खुशी। खुशी क्यों नहीं होगा, आपके कार्यक्रम सुनते हैं इतना मन लगा के।
1: बताइएगा कैसे हैं, क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रहे हैं?
0: सब बढ़िया है, गर्मी का दुख झेल रहे हैं। इतनी गर्मी है कि कुछ पूछो मत।
1: ऐसे क्यों कह रहे हैं, आम के मजे भी तो ले रहे हैं, तरबूज के मजे भी ले रहे हैं।
0: खीरा है, तरबूजा है, तरबूजा है, इसका तो मजा इसी दिन में तो आता है, जेठ की गर्मी में।
1: हम थोड़े से सकारात्मक पहलू देख लें तो ठंडक अपने आप आ जाएगी।
0: अपने आप आ जाएगा, सही बोले पद्मा जी। शादी ब्याह में शामिल हुए थे दो जगह, बढ़िया शादी वादी निपटा के आए हैं।
1: हाँ हाँ,
0: अब घर में आराम से बैठे हैं।
1: तो शादी ब्याह में इन दिनों जब जा रहे हैं तो बस वही चीज एक बार जहन में आ जाती है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही थाली भरे, लोग पर्याप्त खाना लें। तो आपके माध्यम से वो चीज एक बार फिर हम याद दिला दे रहे हैं सभी श्रोताओं।
0: बहुत जरूरी है पद्मा जी इतना करना। मैं परसों ही एक पार्टी में गया था, बच्चे लोग जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा कहीं लेते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं।
1: बस वही चीज ध्यान रखनी है, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, और बच्चों को तो सिखाना ही है
0: जी। बड़ों साथ में है तो प्लेट दे के उनको तो थोड़ा थोड़ा है, तो बच्चे लोग अपने मन से निकाल के
1: जितनी कैपेसिटी हो उतनी ही हम लें, क्योंकि पेट तो आखिरकार हमारा ही है।
0: जी जी जी जी।
1: चलिए गीत बता देंगे क्या, आज कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म है दिल एक मंदिर, स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी के। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है, दिल एक मंदिर है।

0: हेलो।
1: हाँ, मैं तेजी पारा बिलासपुर से रंजन साहू बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं रंजन जी?
1: बढ़िया है भाई, गर्मी का आनंद उठा रहे हैं।
0: उठाना भी चाहिए, वही बात हो रही थी अभी पिछली श्रोता से भी। हर
1: हाँ
0: मौसम का तो अपना मजा ही है, कुछ कष्ट भी हैं, पर हम तो उन कष्टों को पार पाने के लिए माहिर है ना, सभी पॉजिटिव सोचते ही हैं।
1: और जरूरी भी है ना भाई।
0: हर मौसम जरूरी है, तभी तो फसलें आएंगी, हमारे लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे, हवा, पानी, ऑक्सीजन, सारा कुछ।
1: साल का चार मौसम बहुत ही बढ़िया होते हैं, मगर सब अपने अपने समय पर ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज की फरमाइश क्या है मन में?
1: आज की फरमाइश, मन की आंखें का गीत सुना दीजिए। चला भी आ जाओ रसिया।
0: आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक।
1: आपने इतना टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो,
1: नमस्कार, मैं उमा शंकर पांडे।
0: नमस्ते उमा शंकर जी, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों? आपके क्या एक्टिविटीज चल रहे हैं?
1: एक्टिविटी बस वही है जिसे मैं 40 साल जुड़ा रहा उसी से आज पर्यंत जुड़ा हूँ। लोगों को यातायात के संबंध में समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं जिसमें हमारे विशेषकर युवा प्रभावित हो रहे हैं ये बच सके, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ लगातार अभी भी।
0: बहुत खुशी की बात है, आप अभी भी सेवाएं दे रहे हैं।
1: जी
0: और
1: जी
0: क्या परिवर्तन लगता है आपको इतने सालों में, जब आपने शुरू में नौकरी ज्वाइन की होगी और आज इतने सालों बाद, तो लोगों की समझ
1: जी
0: में टेक्नोलॉजी तो चेंज हुई ही है,
1: मैं
0: यातायात
1: उसी
0: के
1: बात
0: संबंध में कह रही हूं मैं।
1: यातायात के संबंध में आ रही लोगों में समझ, पहले हमारा बिलासपुर सामान्य था, हर जगह सिग्नल लग चुके हैं, तमाम कैमरे लगे हैं, सब लोगों को समझाते हैं तो लोग अब यातायात नियमों को कम तोड़ रहे हैं। फिर भी जाने जाने कुछ लोग कर भी रहे हैं, विशेषकर युवा कम ध्यान देते हैं और नियम तोड़ रहे हैं, उससे वही दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। साथ ही मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को ये भी संदेश देना चाहूंगा, प्रायः बहुत से लोग कार रखते हैं लेकिन कार रखे जरूर

0: हैं, घर में रखने की पर्याप्त उनके पास सुविधा नहीं, स्थान नहीं है और वो गली में खड़े कर देते हैं, जिससे क्या होता है सड़क जाम होती है। यदि रात में किसी को आना जाना पड़ गया, गली जाम है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी किसी को अस्पताल जाना है, कोई फ्लाइट पकड़ने जाना है, कोई नौकरी ड्यूटी में जा रहा है, तो लोगों से मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है कि अपनी कार व्यवस्थित रखें, अपने स्थान पर रखें, पहले कार रखने की व्यवस्था कर लें तभी कार खरीदें, ये मेरा निवेदन है सबसे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इवन दिन के टाइम में भी यदि कोई बाहर जा रहा है और आजकल मान लीजिए कैब बुक किया, तो उसका कैब इस कार या फिर अगर बाइक भी खड़ी हो गई एक गली में जिसमें जस्ट कार आ सकती है, तो वो बुजुर्गों को लेने के लिए वो द्वार तक आ नहीं पाती है, वो कैब
0: नहीं आ पाती, बहुत परेशानी होती है। ये लोगों को समझना चाहिए, इसमें निश्चित रूप से ध्यान दें, ये मेरा अनुरोध है सबसे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे लोग सुन भी रहे हैं। और एक चीज और भी ध्यान में आती है पांडे जी, जब पैदल भी जब लोग चलते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि मोबाइल लेके रोड क्रॉस करते हैं आराम से टहलते हुए, आजकल क्रॉस नहीं करते हैं रोड, टहल के जाते हैं वो, जैसे पुराने जमाने में सिखाया जाता था दाएं देखिए बाएं देखिए फिर दाएं देखिए और फिर क्रॉस करिएगा, लेकिन अब वो चलन प्रथा खत्म होती दिखती है,
0: पूरा पूरा ध्यान मोबाइल में है और इसी कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी मोबाइल के से बात करते हुए, चाहे गाड़ी चलाते हो चाहे पैदल ही, इसमें लोगों का ध्यान बढ़ता है, जबकि हमको तन और मन से दोनों से सड़क में होना चाहिए। जब हम सड़क में है, आज के बढ़ते यातायात के दबाव में हर दृष्टि में हमको ध्यान रखना होगा, सचेत होना होगा,
1: चाहे वो गाड़ी में हो चाहे पैदल,
0: चाहे पैदल हो। जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत बता दीजिएगा फरमाइश आप।
0: गीत देशभक्ति गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।

0: हेलो, आपकी पसंद से मैं पद्मा। कहाँ
1: मैं मीनू बोल रही हूँ,
0: से बोल रही हैं मीनू जी?
1: बिलासपुर से ही बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, आज तो बिलासपुर के श्रोताओं की झड़ी लग गई है।
1: अभी
0: बताइएगा क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं?
1: तो मैं हाउसवाइफ हूँ फिलहाल,
0: बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
1: और एक वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया है नाटक का, तो
0: अच्छा,
1: इवनिंग में उसमें बिजी रहती हूँ और सुबह रेडियो सुनती हूँ और घर के काम करती हूँ।
0: रेडियो तो साथी है ही हमेशा का।
1: हाँ,
0: तो और किन किन चीजों का शौक है आपको?
1: मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है।
0: तो पढ़ती हैं कि उसकी समीक्षा या फिर कुछ और उससे संबंधित लिखना भी पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो पढ़ती हूँ और भविष्य में कभी लगता है कि हाँ किसी ने बहुत प्रभावित किया है किसी चीज ने, तो थोड़ा बहुत उस पर कमेंट करती हूँ या उसके कोटेशंस लेके लिखती हूँ।
0: तो आजकल पढ़ने में क्या अंतर महसूस कर रही हैं, बुक जो हमारे हाथ को छुए कागज, या फिर आजकल ई बुक्स की भी प्रथा चली है?
1: मैं दोनों तरह से पढ़ लेती हूँ। मुझे जैसे कोई चीज पढ़नी है और मेरे पास पुस्तक अवेलेबल नहीं है और वो मेरे को नेट पे मिल रही है, तो मैं नेट पे भी पढ़ लेती हूँ और नेट पे बहुत सारी ऐसे पत्रिकाएं
0: उपलब्ध
1: हैं
0: है,
1: जिन
0: बिल्कुल।
1: कहानियां छपती हैं छोटी छोटी, तो छोटी कहानियां 5-10 मिनट में हम पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लेती हूँ। फुर्सत का समय रहता है, जब बहुत टाइम रहता है 1 आध घंटा 1.5 घंटा, तब मैं नॉवल उठाती हूँ पुस्तक वाली जो,
0: ताकि मन को
1: तो
0: भी सुकून
1: ऐसे।
0: मिल जाए पढ़ के।
1: हाँ नहीं, अगर पढ़ना है तो उसके लिए बहुत रास्ते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल हाथ में है तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रील देख रहे हैं या
0: बिल्कुल
1: दूसरे
0: सही कह
1: कुछ
0: रही
1: नई
0: हैं।
1: चीज, वो भी देखना जरूरी है। क्या कितनी वैरायटी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना नयापन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, किस किस चीज पे वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो देखना जरूरी है। लेकिन अगर अपने विचार और उस मानसिक शक्ति को अगर आप उन्नत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छे लोगों के लिखे हुए जो भी

0: चीज है, चाहे वो लेख हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साहित्य हो, पढ़ना जरूरी है।
1: बहुत अच्छी और सारगर्भित बात कही आपने। अब गीत बता दीजिए कौन सा सुनना चाहेंगी।
0: मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो।
1: ये लव इन टोक्यो फिल्म का गीत है।
0: हाँ, ये लव इन टोक्यो फिल्म का गीत है।
1: आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक।
0: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो, आपकी पसंद।
0: बिल्कुल, हेलो, आपकी पसंद में ही फोन लगा है आपका।
1: लखराम से मोहनलाल कैवर से बोल रहा हूँ दीदी।
0: कैसे हैं मोहनलाल जी?
1: अच्छे हैं दीदी, थोड़ा बारी बेला लगाए हैं तो वही बारी बेला थोड़ा देख रहे हैं दीदी।
0: हाँ
1: हाँ, ये साग भाजी है, जो भाजी है ना, सादा चेच है, करमता भाजी है, यही वाला बोए हैं दीदी। और आमा वगैरह भी है, जाम भी है अपना बारी में, बिही है, अमरूद।
0: अरे वाह, बिल्कुल हरियाली छा गई।
1: हाँ, हरियाली छाई है तो उसी को रखवाली कर रहे हैं दीदी।
0: हाँ, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। तो
1: ओ,
0: सुबह कितने बजे निकल जाते हैं काम पे?
1: काम में अब यही रहते हैं दीदी, बारी में।
0: अच्छा,
1: अब उसी का रखवाली करते हैं, खर्चा पानी उसी में चलता है दीदी। और जाम भी मस्त फरा है दीदी, अब ये थोड़ा पकने वाला शुरू हो रहा है।
0: मीठा मीठा जाम, चलिए बड़ा अच्छा लगा। बताइएगा
1: हाँ
0: गीत कौन
1: दीदी,
0: सा सुनवा दे मोहनलाल जी?
1: स्वर्ग से सुंदर सुना दीजिएगा दीदी। हो किसी उसी फिल्म में कोई भी गाना।

0: हेलो, आपकी पसंद से मैं पद्मा।
1: हाँ नमस्ते दीदी, मैं रतिंद्र बोल रहा हूँ पौड़ी से।
0: कैसे हैं रतिंद्र?
1: एकदम बढ़िया दीदी।
0: क्या चल रहा है इन दिनों, पौड़ी के हालचाल बता दो।
1: बस अभी तो हमारे गांव में ये गेहूं वेहूं अभी कटा हुआ है हमारे खेत से। और अभी वही मूंग और उड़द का फसल ले रहे हैं हम लोग। और तो बाकी सब बढ़िया है जी। गर्मी भी काफी तेज पड़ रही है।
0: हाँ, तो शादी ब्याह भी अटेंड कर रहे होंगे इन दिनों?
1: हाँ, पर अभी तो वो जेठ का महीना लग गया है ना, तो ये लॉन मास है, तो इसमें तो अभी शादियाँ नहीं होती। एक महीने के लिए भी विराम है।
0: हाँ
1: जी, इसके बाद फिर शादियाँ होंगी,
0: तो इसलिए पेट के लिए मसाला और ज्यादा मीठा इन सब के लिए भी आराम है।
1: हाँ, बिल्कुल दीदी। और क्या है, हमारे यहाँ तो गांव में तो बस हम लोग सुबह सुबह बासी वगैरह खाते हैं, दही और बासी।
0: हाँ।
1: तो उससे पूरा ठंडक भी बना रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ का तो बहुत अच्छा चीज है ना बासी खाना।
0: और ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इन दिनों सारे डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं।
1: जी जी दीदी। हाँ
0: गीत बता दीजिए,
1: जी,
0: कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: ये पतझड़ सावन बसंत बहार।
0: एक बरस के मौसम चार।
1: जी जी मैडम, क्योंकि अभी ना सारे पत्ते भी झड़ चुके हैं, तो मुझे ये गाना बहुत पसंद है।
0: बिल्कुल, आप तक पहुंचेगा ये गाना।
1: जी दीदी, धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी पसंद से मैं पद्मा
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: अपना परिचय दे दीजिएगा एक बार।
1: मैं वंशराज पाठक बोल रहा हूँ।
0: वंशराज जी, क्या करते हैं वंशराज जी?
1: मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, किस चीज की पढ़ाई हो रही है अभी?
1: मैं 12th में था।
0: गर्मियों में और आपके क्या क्या एक्टिविटीज हैं अभी?
1: जी जी, बस यह है कि जीव जंतु के लिए पानी वगैरह, गर्मी में चिड़िया वगैरह के लिए उनका भी ध्यान, और प्रकृति के लिए पेड़ पौधा का, जैसे गांव में जाकर के पेड़ पौधा लगाना ताकि प्रकृति बैलेंस रहे।
0: बहुत सही कह रहे।
1: पीपल का, नीम का, फलदार पौधे का, पौधा का ये, और चिड़िया जीव जंतु के लिए पानी, जो हैंड पंप रहता है उनके लिए, गड्ढा खोद करके उनके लिए पानी संग्रहित करना।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने।
1: जी जी।
0: और अपनी पसंद बता दीजिएगा, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, पेन पर्वत हमें घेर लेते निगाहों पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत पहुँच रहा है।
1: जी जी।

0: तो ये था हमारा आज का हेलो आपकी पसंद, जिसमें हमें तकनीकी सहयोग मिला सौरभ केशरवानी का। तो अब चलते चलते यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए हमें उस कार्यक्रम से जिसका नाम है
1: हेलो

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।

0: से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है
0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रस्तुति तो आपको पता है मेरी थी पद्मा मणि की। और अब आइए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर का पुनः प्रसारण।
4: बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पर आधारित आकाशवाणी बिलासपुर का दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ, मनोरंजन, देश विदेश के समाचारों के साथ साथ समसामयिक विषयों की जानकारी का सशक्त प्राचीन माध्यम आकाशवाणी अपना 9 दशक पूर्ण कर चुका है। जन जन की वाणी आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज आकाशवाणी परिसर बिलासपुर से एक विशाल वाकाथान का आयोजन किया गया है। आज प्रातः ठीक 7 बजे बिलासपुर जिले के सम्माननीय जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजय अग्रवाल जी एवं बिलासपुर जिले के आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर वाकाथान रवाना किया जाएगा। वाकाथान आकाशवाणी पर नूतन कॉलोनी सरगंडा से चलकर नूतन चौक, सीपत चौक, मुक्तिधाम तिराहा से वापस आकाशवाणी परिसर पहुंचकर संपन्न होगा। पदयात्रा के सभी सदस्य ध्यान दें, यद्यपि इस समय यातायात का दबाव नहीं होता है, फिर भी सड़क के एक किनारे चलें, कतार में चलें। मित्रों, आज ही बिलासपुर जिला के औषधि विक्रेता संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहर में बाइक रैली निकाले जाने की योजना है। आज प्रातः 11 बजे मेडिकल कॉम्प्लेक्स तेलीपारा से बाइक रैली चलकर पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, सीएमडी चौक, तारबहार, रेलवे कॉलोनी, तोरवा पावर हाउस, दयालबंद, गांधी चौक, गोल बाजार, देवकी नंदन चौक, सरकंडा, नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। रैली के प्रस्तावित समय में शहर में सबसे अधिक यातायात का दबाव होता है, अतः रैली में चल रहे सभी दोपहिया वाहन चालक दो दो के जोड़े में तथा कतार में चलें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि रैली से आम यातायात या शासकीय कार्य किंचित मात्र भी प्रभावित न हो और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत करते समय मुख्य मार्ग में अनावश्यक जाम की स्थिति निर्मित न करें, क्योंकि माननीय जिला न्यायालय सहित बड़ी संख्या में यहाँ शासकीय कार्यालय स्थित हैं। बाइक रैली में दोपहिया में 3 सवारी न चलें और हेलमेट पहनकर ही चलें। साथियों, चौक चौराहों में लगी सिग्नल लाइट हम सभी की सुविधा के लिए है, इसका हम सभी को 100% पालन करना चाहिए, इसमें हमारी शान है। किंतु कुछ मनचले, शरारती या असामाजिक तत्व प्रायः रेड सिग्नल तोड़ते हुए औरों के लिए खतरा उत्पन्न करने में अपनी शान समझते हैं। सावधान, ऊपर वाला अर्थात कैमरा अपलक देख रहा है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
3: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर का पुनः प्रसारण जो उमाशंकर पांडे जी से हमने सुना। एफएम बैंड 103.2।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी, श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर। श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी
3: प्रदेश मराठवाड़ा और उड़ीसा
1: जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन

0: वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, pets
6: are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
6: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
6: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
10: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
6: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
4: He was black.
3: As you know.
4: As you know.
3: how to be beautiful.
4: How to be beautiful.
3: He wanted to know.
4: He wanted to know.
3: Colorful feathers.
4: Colorful feathers.
3: He wanted to grow.
4: He wanted to grow.
3: He found.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी।

0: मगर मगर क्या? अच्छा, अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी, ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिक का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी।
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने

0: राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
1: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
0: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
1: हाँ दीदी,
0: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
1: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11:30 होने वाले हैं। अब से 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ

दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक

स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपए की जगह 550 रुपए शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक

0: विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर्स की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थी 20 जून तक अपने विद्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत चयन के लिए 26 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। ये योजना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है, वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा कर सकते हैं। और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आकाशवाणी रायपुर से हम रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 12 बजे हैं, अब से शाम के 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा

0: किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राज हठ। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीत बद्ध किया गाना। आवाजें थीं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीत बद्ध किया गाना। फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम रागिनी।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार, संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ, फिल्म का नाम मदर इंडिया।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूँ।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कैसे मुस्कुरा रहा है। मन करता है इसे गले लगा लें, पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर, किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। ये है आज की इबारत। और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम दो गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे। और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे, फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो,

गुलजार साहब के बोल, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमोहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमोहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये आशा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदियां पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक, ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुस जी गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़, पहाड़, नदी, पंछी, सागर, फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहां थी? मैं आपको बताता हूं, दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूं। जी हां, बहुत ज्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं, नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है? इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप जमीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत, सागर, किनारा, गुलमोहर, नदी, पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहां तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, अपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती है कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता है जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता

हैं जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से वृक्ष पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के

बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6 बजे, एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए, मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी देवी अहिल्या की राजधानी में, ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है कि फ्लैट में रहती हूं और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है, लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

0: कर कर ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये नदी का किनारा।
1: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि

हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है, लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और रक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुद्र का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर, जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: अपने
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है?

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीर की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

आपको पता है विविध भारती का जो कंपाउंड है वहां सबसे ज्यादा आते हैं पैराकीट्स यानी तोते। आपके इलाके में कौन से पंछी ज्यादा नजर आते हैं?

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है दो नदियों के बीच बसा है, महानदी और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की, मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

0: साथ सुनो।
1: कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

दोस्तों, ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है, जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जानसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

0: झाड़ू।
1: सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थीं। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं, यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि

0: निकल पड़ूंगा।
1: शाबाश, मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
2: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन

0: हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों की नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपाओलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के

0: प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार।

0: जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

0: हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं OP नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।
1: यूं से

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए। बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
0: अरे वाह।
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग

0: जाते रहे वहाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, जब भी चेहरे की चमक बता रही है
0: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
0: बिल्कुल,
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा अनुभव?
0: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा,
0: वहाँ जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो ये करो तब जाओ वहां तक पहुंचो आपको, एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध, तो लेकिन इस बार था रोप वे शुरू हो गया वहां पे।
1: अच्छा,
0: तो बस आप रोप वे तक पहुंचिए अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से किसी भी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का, अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो,
1: अरे वाह,
0: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा,
0: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है
0: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है, तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
1: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
0: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखे, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है हमें, नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
0: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
1: लेकिन फर्क होता है, स्वाद
0: बिल्कुल फर्क होता है,
1: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है मैं ऐसा मानती हूँ, और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है फील गुड महसूस कर रही है,
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
0: जी।
1: तो अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है
1: ना। बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियाँ।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा। ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी,
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा।

0: का उसको चलाने के लिए।
1: बिल्कुल
0: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है। यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख
1: बताइए, तब जाके हमें हाँ शुद्ध जो शहद है वो मिलता है,
0: एक
1: है ना?
0: बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को पौधों को जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता
0: ने
1: पर्यावरण को लाभ भी पहुँचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं और प्रचुर मात्रा में फल मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
0: जी हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था।
0: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा, और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए।
1: हाँ।
0: बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
1: करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं, इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो, उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाक के तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है।
0: वो कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटी

0: के सालियों पर छाता बनाया था। अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे। ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती है। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है। ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में,
1: जी
0: हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और
1: जी
0: उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार,
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे
1: जी।
0: में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की

0: बुनाई की कला को सीख सकें।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छुई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ तीन होता है, और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तनचुई के नाम से जाना जाने
0: अच्छा
1: लगा है।
0: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
1: नाम
0: तीन
1: जुड़
0: भाई
1: के।
0: थे
1: हाँ
0: उनके। हाँ।
1: देखिए
0: और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा, और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया, और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में दो से पांच रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है, और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
0: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: बहुत
0: भी।
1: मुश्किल है।
0: तो इसमें एक या दो ताने और दो से पांच बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई, जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके
0: जी
1: अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या दो रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
0: जी और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है, और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं, और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तांचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं, या विवाह समारोह के अवसर हैं, या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है, और उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का।
0: हाँ,
1: तो हमसे शामिल करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दी
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है इसे हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि

0: चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं, वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान हैं।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है, और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
0: बहुत गहरी बातें आती है अगर हम इसे समझ पाए तो। कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझ में आता है ना, अच्छी तरीके से जिस भाषा को जानते हैं।
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना? हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर।
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: है।
1: क्या
0: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक। उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है, है ना? ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती हैं,
1: सबका नजरिया
0: मायने रखता है, है ना? तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए। एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से। जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा
0: कितना अच्छा लगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं।
0: तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने

0: लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शौक रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, अपने मन से सीखिए।
1: हाँ।
0: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
1: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
0: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा
1: हाँ, हम चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है,
0: बढ़ जाता
1: देखने
0: है।
1: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: तो एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

घट के घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल
1: कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का

0: आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
1: और ये
0: सामने
1: बहुत
0: आते हैं।
1: खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो
0: हाँ
1: बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं,
1: हाँ
0: अगर आपने इनको छेड़
1: बिल्कुल
0: दिया
1: बिल्कुल मच्छी नहीं
0: ऐसे ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो
1: बहुत
0: पीले रंग का होता है ना,
1: हाँ हाँ
0: वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता
1: बिल्कुल
0: है ना। तो चलिए भाषा पर हम
1: भाषाओं पे।
0: बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है,
0: हाँ
1: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो
1: जी
0: मोहब्बत है ना
1: बहुत बड़ी भाषा
0: वो
1: है ये।
0: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती
1: बिल्कुल
0: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है, और गुजराती सीखना आसान रहा, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए कि, तभी हम कहें ना श्रोताओं के जो विचार है ना वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो
0: बिल्कुल
1: वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं, लिखती हैं
0: बिल्कुल।
1: तो।
0: देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं
1: जी
0: अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी,
0: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है, यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं, ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी
1: भाषा
0: है कि
1: भाषा है।
0: विदेशी भाषा
1: जी,
0: ऐसी
1: बिल्कुल।
0: है या देशी भाषा
1: अगर
0: है।
1: आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे,
0: चलिए
1: बहुत जरूरी
0: आपको
1: है।
0: भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं हो
0: हमें
1: सकती।
0: वैश्विक भाषाएं जितनी भी
1: बिल्कुल
0: हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं,
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना।
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है, जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो। जी
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और ये श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या
1: अर्थ है,
0: हाँ, वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम

0: और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका, ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
0: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं?
1: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
0: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। उन्होंने बताया इसके बारे में, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तेल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, 1 बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है, और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, 1 बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन

0: भोजन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं। और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खड़ा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा वो उत्साह वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
1: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर।

0: जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
1: नहीं, जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी,
1: अल्मोड़ा हुआ, पहाड़ों
0: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं, मतलब
0: जी
1: मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त, तब तक
0: अच्छा
1: शुरू नहीं हुआ था, तो जो
0: जी
1: शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह कर इतना आदी था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से
0: जी
1: था,
0: जी जी
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब,
0: हाँ
1: और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था
0: जी
1: वो एक अलग अनुभव था।
0: जी
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ, लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
0: हाँ
1: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
0: हाँ
1: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, जो
0: बहुत
1: घूमने जाओ
0: मुश्किल
1: तो अलग बात है,
0: जी
1: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो, कभी
0: हाँ
1: रहा ना हो,
0: हाँ हाँ
1: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन वो गुजरा, और मैं 1.5 साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया,
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और
0: वो
1: वो भी
0: सब।
1: सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अज्ञेय जी वहां पे
0: हाँ
1: रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: यस,
1: ये सब
0: उदय
1: भी,
0: शंकर जी का
1: उदय
0: था
1: शंकर, सॉरी, उदय
0: जी
1: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब,
0: जी
1: कि ये सब कुछ। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे रहेंगे। उस वक्त
0: रहते
1: वाकई हैरान होता था मैं,
0: कैसे
1: कि
0: जी
1: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है, पहाड़ों में कैसे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था।
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये सपनों की नगरी थी,
0: जी
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे, तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक
0: जी
1: अलग ही दुनिया थी, लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है
0: हाँ
1: उस पे, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सवाल ही उठता, हम तो फ्रेश थे एकदम, है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: और तब तो लंबी लाइनें
1: हाँ,
0: हुआ
1: वो लंबी
0: करती
1: लाइनिंग
0: थी।
1: हुआ करती थी, तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहां रहे, और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटॉपिल से किंग सर्कल आना, वहां से पैदल,
0: जी
1: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई
0: हाँ,
1: ट्रेन
0: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
1: में।
0: ढाल लेता
1: तो फिर
0: है
1: वो लोग अपने आप आपको उतार देते
0: जी
1: हैं। तो
0: जी
1: ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
0: जी
1: उतार देंगे लोग,
0: लोग उतार
1: तो ये
0: देंगे
1: उतार, तो
0: जी।
1: ये
0: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
1: यहां जो जिंदगी बदली, वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
0: चरम
1: पर
0: पर
1: थी,
0: थी
1: चरम
0: जी
1: पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
0: जी
1: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में, मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीजें
0: बजाया करते थे
1: बजाया
0: उसको
1: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो, और
0: बिल्कुल।
1: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
0: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है, क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
1: बहुत प्यार है,
0: बल्कि
1: बहुत
0: हमने उनको
1: प्यार।
0: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
1: जी,
0: तब मैं
1: सही
0: था
1: सही।
0: नहीं शहर में।
1: हाँ।

0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज़, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जब अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या
0: हाँ
1: बात
0: ना,
1: है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: बेटर रोड
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह, उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
1: जी
0: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह
0: कि रख के जाओ, देखता हूं, मैं करता हूं, सोचता हूं, बताता हूं,
1: जी जी
0: है ना,
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
1: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब
1: जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है, वाह वाह
0: तो
1: वाह
0: ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब, ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए। हाँ,
1: अच्छा,
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती तो वो
1: ओ
0: गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और
1: जी जी
0: चलिए।
1: जी ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ
0: हाँ
1: पूरी तरह से जुड़ गई है,
0: जी,
1: और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो
0: हाँ
1: जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
1: वही
0: उसको
1: आप
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही, बिल्कुल
0: और ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ।

0: लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: उसमें जो कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स है उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
0: पंकज जी उसके बाद
1: जी
0: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ शख्स हरपल हादसा होना, तो पंकज जी से भी जब मिला तो मैंने खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
1: नबील था,
0: हाँ
1: नबील था।
0: नबील, नबील
1: जी जी
0: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं।
1: जी
0: तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ, तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
1: जी
0: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था नीचे,
1: अरे बाप रे,
0: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
1: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
0: नहीं नहीं नहीं ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
1: अच्छा है, ओके।
0: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
1: आरोही में गाया।
0: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनते थे, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त ने ये बात
0: ये
1: कही?
0: मेरे उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे।
1: जी जी
0: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं,
1: ओहो,
0: है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है
1: जी
0: और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था
1: जी।
0: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहां गाने गए, मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे। तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना, फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया हाँ, या सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये? तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये मजरू सुल्तान
1: जैसे बड़े
0: आशीर्वाद
1: शायर की बात है ना?
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

0: कि अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादा तो शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी,
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर के अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा है। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी,
1: है ना, भरपूर ऑडियंस पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूं तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा या प्यार हुआ ना तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब,
1: हाँ, जी मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूं जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को भी बहुत पसंद थी,
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका हाँ, आखिरी एल्बम था ये,
0: ओहो हो,
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
0: जी, जी,
1: वो चले गए
0: जी।
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी।
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूं कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल।
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
0: जी जी जी।
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
0: रिबन खोला
1: ऑडियंस के सामने, ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
0: जी।
1: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज हाँ, है पूरा
0: और पूरा हॉल
1: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, गा रहे हैं वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, स्टैंडिंग माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे,
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब उनको पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी जाने की तुड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने

0: पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी। हो
1: जी
0: ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ, जाने कितनी उड़ान बाकी है जान।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: फजल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार
0: है।
1: शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों
1: यादों
0: के
1: के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली।
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से।
1: चीजों को
0: हाँ, सबको संभालते थे।
1: संभालते
0: तो एक अच्छी टीम थी
1: थे। जी
0: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे।
0: है।
1: जी
0: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ
0: कहीं।
1: रहे हैं,
0: हाँ,
1: खयाम साहब आ रहे हैं।
0: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए,
1: जी
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
1: बिल्कुल।
0: सारे। और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना।
1: आए,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: खयाम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा
0: हाँ
1: है।
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान।
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
0: हाँ
1: और वहीं 1 घंटे बात हो रही
0: हाँ उनको
1: है।
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था, वो
1: जी
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
1: बिल्कुल
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत

0: अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों को भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा
0: उनके
1: कर
0: ले
1: सकते
0: सकते हैं
1: थे
0: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये
1: जी,
0: लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल
0: में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं
0: किसी के पास नहीं है, वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है,
1: जी।
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी,
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम
1: बढ़
0: जो
1: के
0: है
1: एक हैं
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
1: जी
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी,
0: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे दो तीन जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद

0: वो अपने घर चली गई, मैं
1: अरे
0: अपने घर चला आया।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है,
1: हाँ,
0: और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं
0: उम्मीद ही
1: सकता
0: होंगी
1: था।
0: नहीं कि सबकी। तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
1: हाँ
0: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
1: हाँ
0: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो
1: हाँ
0: मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे।
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
1: हाँ।
0: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
1: गजब।
0: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
1: हाँ
0: हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे,
1: हाँ
0: उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये नहीं
1: है।
0: होने देंगे,
1: हाँ
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे।
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: पता नहीं
1: ये
0: कि।
1: है
0: हाँ, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी। शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर।
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: कोरे
1: गिरा।
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या
0: एक
1: बात है,
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात क्या बात
0: गम
1: क्या
0: छुपाना
1: बात है
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं और अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन को।
1: होता है
0: हाँ,
1: ये,
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है।
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।

0: और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूं,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब
1: जी,
0: एक होता है शराब
1: और
0: एक होता
1: शराब,
0: जिसे मृग मरीची का मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है दिखता है होता नहीं,
1: होता नहीं
0: है ना, मरुस्थल में
1: आग का धोखा है,
0: हाँ पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यार।
1: वाह वाह, अब तो शराब से ही,

0: कहाँ से हम
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या बात
0: यू
1: है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशिका। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान।

प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ा झरिया, घासीडी, घटगांव, बैगहवा, बैडाण, कंडराजा, चोरकी, पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं।

0: प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण अभी किया जा रहा था। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है समन्वय साहित्य परिवार छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर में आयोजित डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग की रेडियो रिपोर्ट। रिकॉर्डिंग संपादन और सहयोग महावीर बरगाह का है और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

दिनांक 17 मई को समन्वय साहित्य परिवार छत्तीसगढ़ के द्वारा कीर्ति शेष प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग का आयोजन बिलासपुर के प्रार्थना भवन जल संसाधन विभाग परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा और अध्यक्षता की डॉक्टर चितरंजन कर ने। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा का जीवन वृत्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के किशोर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अध्ययनशील विद्यार्थी गहन शोधार्थी तेज धावक कबड्डी के निपुण खिलाड़ी अंग्रेजी के अध्यापक हिंदी के प्राध्यापक प्राचार्य एनसीसी के मेजर शिक्षाविद भाषाविद छत्तीसगढ़ी के ध्वजवाहक गद्य गीत से अपनी सृजन यात्रा आरंभ करते हुए छत्तीसगढ़ के ललित निबंधकार छत्तीसगढ़ी कथाकार चिंतक विचारक संपादक समीक्षक जैसे गुणों से निर्मित होता है। यदि हमें छत्तीसगढ़ को पहचानना है तो डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा को जानना होगा। उनके कालजयी शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन की शब्दावली को पढ़ना होगा। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से आपकी 150 से अधिक रचनाएं प्रसारित हुई हैं। आपकी लोक कथात्मक रचना को श्रेष्ठ करते हुए अखिल भारतीय लोक कथा पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2005, विद्याधर कवि सम्मान, साधना सम्मान, वयोश्रेष्ठ सम्मान, समन्वय रत्न सम्मान, वयोवृद्ध सृजनशील साहित्यकार सम्मान, बागेश्वरी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ अस्मिता पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग उनकी 98 जयंती के अवसर पर आयोजित थी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन राजकीय गीत और समन्वय साहित्य परिवार के समन्वय गीत के साथ हुआ।

0: इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत और स्वागत अभिभाषण दिया डॉक्टर देवधर महंत ने।
1: डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की 98वीं जयंती वर्ष में आयोजित समन्वय साहित्य परिवार छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठा आयोजन डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग में अपनी जीवन चर्या से कुछ टुकड़े हमारे साथ साझा करने वाले विभिन्न

0: गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराने वाले साहित्यिक वृंद, सुधीजन, सज्जनों और देवी, छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य को नई दिशा देने वाले युग प्रवर्तक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आप सबको नमन करते हुए उन्मुख होता हूँ कि मैं तमाम उम्र पर्वतों से लड़ता रहा, मैं तमाम उम्र पर्वतों से लड़ता रहा, चंद लोग गिट्टी गीली मिट्टी खोद कर फरहा दी गए। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में लोकार्पण हुआ डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की कृति राज जागा पाखी वाज, कीर्ति शेष गुड़ी के गोठ और छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा पुस्तकों का
2: प्रतिष्ठित अखबार में सल्ला दू अच्छा गुड़ी के गोठ प्रकाशित हुई से एक स्थापित करे में छत्तीसगढ़ ला बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर पालेश्वर जी के ये गुड़ी के गोठ स्तंभ स्थापित करी। और एक किताब कीर्ति शेष डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा संपादक हवाएं हमारे डॉक्टर देवधर महंत जी, ये चारों किताब आपके सामने विमोचित हुआ थे, लोकार्पण हुआ थे छत्तीसगढ़ हिमवर्धा कथे मुह उठौरनी।
1: समन्वय साहित्य परिवार छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा विभिन्न हस्तियों का और उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण था साहित्यकारों का विमर्श। सुनते हैं डॉक्टर अजय पाठक को।
3: थोड़ी सी बात ये कहना चाहूंगा कि आज का ये जो आयोजन है इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जिसके बैनर तले ये हो रहा है समन्वय साहित्य परिवार, लगातार 30-32 वर्षों से यह संस्था चल रही है और हर साल प्रदेश के किसी न किसी शहर में एक इसी तरह का बृहद आयोजन होता है और इसी तरह आपकी तरह ही जाने माने प्रतिष्ठित लोग, प्रबुद्ध लोग, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं। अब पालेश्वर शर्मा जी के बारे में क्या कहें, समय अनुभव जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से मेल खाता है, ये चार पंक्तियां शुरू की, चार पंक्तियां आखिर की, आप उनके चरित्र के साथ जो है तात्पर्य मिला लेना, पूरा का पूरा करेक्टर डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी का सामने आ जाएगा। यही मेरा आज का उद्बोधन होगा। गौर से देखें उनके व्यक्तित्व को तो लगता है कि किसान के भीतर एक विद्वान की मशीनरी फिट कर दी गई, पूरा मिजाज किसान का और तेवर विद्वान, बड़े स्वाभिमानी। हमने तो उनको छत्तीसगढ़ का एनसाइक्लोपीडिया के रूप में हमने देखा उनके चरित्र। आप जिस विषय पर बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ किसानों से बड़ी सहानुभूति, स्वाभिमानी इतने थे, बड़े से बड़ा आदमी आ जाता था बगल में बैठ जाता था, जबरदस्ती उससे बात नहीं करते थे, अपना चरित्र बन चमकाने के लिए और व्यक्तित्व बनाने के लिए। आप स्वाभिमानी व्यक्ति के चरित्र के साथ इन पंक्तियों को तात्पर्य मिलाकर देखिए कि बढ़कर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, बढ़कर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, तेवर वही थे अपने पुराने नहीं गए, अपने हुनर से शम्स थे, अपने हुनर से शम्स थे, जुगनू थे, जो भी थे, जबरन किसी के साथ फोटो खिंचाने नहीं गए।
2: अगले क्रम पर डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं।
4: हम जीवन भर साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, हमारा मूल अध्ययन साहित्य का है। आदरणीय पालेश्वर जी से अनेक बार मुलाकात की, चर्चा की, पर आदमी की पहचान आदमी नहीं होता है, आदमी की पहचान होता है उसका कार्य। उनसे मिलकर के अनेक सभाओं में हमारी उनसे भेंट हुई, हमने उनको नहीं जाना, हमने उनको तब जाना जब हमने उनकी रचनाओं को पढ़ा, उनको समझा किससे कितना लिखा है, कितना बल्क में लिखा है, उसका कितना वजन है, इससे कुछ भी नहीं होता। रचना वो होती है, काव्य क्या होता है, इस संसार में होने वाली घटनाओं बाहर आदमी देखता है, किंतु किसी का हृदय बदलता है जन्म जन्मांतर के संस्कारों से, जो कठोरता हमारे हृदय पाषाण के समान हमारे हृदय हो गए हैं, सबके हृदय पाषाण है, उस पाषाण को पिघलाने की शक्ति की और कभी नहीं होती, दूसरे में नहीं होती। जब उस घटना को कभी प्रस्तुत कर देता है तो हृदय पिघल जाता है। हमने उनकी रचनाओं को पढ़ा, हमारे पास समय का बहुत अभाव है, फिर भी हमने उनकी रचनाओं को पढ़ा। पहले उनकी किताब को हम पकड़ते थे, बाद उनकी कथा हमको पकड़ देती, कुछ होती नहीं। हमने बहुत कोशिश की कि उन कथाओं को हम छोड़ दें।

0: मदीने वाली रहस्य इतना प्रहार मारने में होता है। देखिए काव्य के तीन लक्षण है कि उसको पढ़कर द्रवय श्रवय पुलके नहीं तिनके ये पाषाण, आपका हृदय जो कठोर में द्रवित हो जाए, शरीर में पुड़क हो जाए, रोमांच हो जाए और आंखों से अश्रुधारा बह जाए। और मैं पुष्पा दीक्षित आपको समय बता रही हूँ कि उनकी रचनाओं को पढ़कर हम रात रात भर हुए, इतना बड़ा प्रभाव उनकी रचनाओं का, बल्कि उनका जो मतलब हृदय को छेद देते हैं, हृदय को बीध देते हैं कि आदमी का मर्म कहां तक पहचाना जा सकता, कहां तक आहत हो सकता है। समय मिलते कर देंगे पर इतनी बड़ी विस्तृत सभा सामने खड़ी है, इसमें हम चूक जाएंगे तो हमारी विलंबता होगी। इतना कह के हम विराम देते हैं, आगे वक्त बहुत सारे बोलने के लिए।
1: हेला कहते हैं थोड़ा कहा ज्यादा समझना, और यही बात ला अब हम हमारे बाकी जो बैठे हमें कहुना वक्ता उपमन से आग्रह कर वो आइए और उनके परिवार की साहित्यिक दृष्टि से सबसे गुने से सरला दीदी
2: जानते हैं कोई भी कला विशेषकर साहित्य चाहे वो लिखना हो या बोलना हो ये दोनों ही बहुत कठिन होता है क्योंकि मनुष्य अपने मन की बात को कहना चाहता है परंतु सीधा सीधा नहीं बोलता, वो बहाने से बोलता है। वो कहता है ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं यशपाल हूँ तो मैं मेरी तेरी इसकी उसकी बात लिखूंगा। तो क्या वो मेरी तेरी उसकी इसकी बात में खत्म होगी बात? नहीं, वो अपनी बात भी लिखता है। बस लिखने की शैली, लिखने के लिए भाषा, लिखने के लिए विचार जो होता है, जिसके लिए कहते हैं कि विचारक नई पोथियां सी रहा है, और वो विचारक थे डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जो लगातार पोथियां सीते रहते थे। और बहुत सारी किताबें हैं उनकी, पर याद रखिए बुरी के बोझ में व्यस्ति विकसित हुआ है। किस रूप में? समष्टि के रूप में।
1: क्या सोचते हैं पालेश्वर जी के जीवन ऊपर, उनका कर्म ऊपर, सुन वो आदरणीय दिनेश शर्मा जी का। मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में ना कहते केवल एक संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा कि वे असाधारण होकर भी बहुत साधारण थे, विशिष्ट होकर भी बहुत सरल थे, और गृहस्थ धर्म के और सभी कर्मों का पालन करते हुए भी उन्होंने इतनी विराट अनवरत साहित्य साधना की है जिसका चर्चा करने के लिए आज पूरे साहित्य क्षेत्र के दिग्गज और प्रगाढ़ विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रयास है, मैं अपनी ओर से उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ, समन्वय साहित्य परिवार को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: सुनते हैं आदरणीय भाई प्रभात मिश्र। जब मैं माँ भारती के अनन्य उपासक को, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवक को, शब्द के शिल्पी को, भाव के राजकुमार को, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के इस सतत गौरवगान को वो जब विस्तार देते दिखते हैं तो उनकी रचनाओं में जो ओज दिखाई देता है, जो तेज दिखाई देता है, तो मुझे अष्टावक्र गीता का एक श्लोक कि निशंगो निष्क्रियोषी त्वम स्वप्रकाशो निरंजना एवमेव ही ते बंधा समाधि मनुतिष्ठ। तू निशंग है, तू सारे बंधनों से मुक्त है, तेरा जो कर्तव्य है वो तू कर रहा है। अब वो कर्तव्य मुझे उनकी उन रचनाओं में दिखता है जब वो बूढ़ी की कोट में लिखते हैं, जब वो अपनी गद्य की तमाम रचनाओं में लिखते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि एक अष्टावक्र गीता कहीं उनके साक्षात उनके जीवन में कहीं घट रहा है, कहीं पे आगे दिख रहा है। एक जीवन अनेक जीवन ऐसा लगता है उन्होंने जी लिया है।
4: आप हैं डॉक्टर चित्रंजन कर।
5: मैं बहुत अनौपचारिक बातचीत कर रहा हूँ बहुत चंद मिनटों में कि ये कार्यक्रम वास्तव में शताब्दी समारोह का पूर्वाभ्यास। एक चीज ये बता दूं, मैंने कहा कि ये समन्वय का जो आयोजन है, समन्वय का मतलब ही है सबको सामंजस्य में पिरोना। तो इसमें कहीं भी दो मत नहीं है कि इतना बड़ा जो उनका साहित्य का जो ये दिख रहा है संग्रह, को अभी मैंने एक या दो बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि कोई पाठ कोई किताब एक बार में पढ़ी नहीं जा सकती, जितनी बार उसका पाठ होगा नए याद कर देता है। तो ये मैं सुधीर

0: आत्माओं से साहित्य प्रेमियों से कहूंगा, घुड़ी के बोट वास्तव में काल से संवाद है और जो काल से संवाद करता है वही काल जय होता है। तुलसी आज इसलिए तुलसी है क्योंकि उन्होंने अपने समय को लिखा। तो हमारे आदरणीय पालेश्वर जी ने जो लिखा है उनने दुनिया को अपने समय को समाज को जो देखा है उसको लिखा है, इसलिए वो कालजयी कृति है। मैं तो बार बार कहूंगा शलाका पुरुष का बहुत अच्छा कहा है, कविराज का है बहुत अच्छा कहा है, कविश्वर का है बहुत अच्छा कहा है। ये ललित निबंध छत्तीसगढ़ी में ललित निबंध गद्य में अभी तक इतना प्रौढ़ लेखन किसी का नहीं है। इसका प्रमाण आप जब पढ़ेंगे जानेंगे। दो वाक्यों में कहूंगा, अच्छी कविता वो है जिसमें बोलचाल की सहजता हो और अच्छा गद्य वो है जिसमें कविता की सरसता हो। और ये घुड़ी के गोट को आप पढ़ लीजिए, आपको कविता की सरसता मिले।
1: आभार प्रदर्शन किया समन्वय साहित्य परिवार छत्तीसगढ़ बिलासपुर इकाई के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर गंगाधर पटेल पुष्कर जी ने।
2: छत्तीसगढ़ के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में पधारे सभी अतिथिगणों, परिजनों, साहित्यिक स्वजनों को हम अभिनंदन, वंदन और अभिनमन करते हैं, जिन्होंने डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग पर उनकी स्मृतियों को समर्पित इस आयोजन में उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया है। विशेष रूप से आभारी हैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी साहित्यिक मित्रों, प्रबुद्ध जनों, पत्रकार बंधुओं और पालेश्वर शर्मा जी के परिवार जनों के प्रति भी हम आभार प्रदर्शन करते हैं।
1: इसके साथ ही समन्वय साहित्य परिवार बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग समारोह की रेडियो रिपोर्ट यही सम्पन्न होती है।

अभी आप सुन रहे थे समन्वय साहित्य परिवार छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर में आयोजित डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग की रेडियो रिपोर्ट। रिकॉर्डिंग सहयोग संपादन महावीर बरगाह का था और प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। शाम के 5:22 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की रचना। नुसरत फतेह अली खां का संगीत है, फिल्म है कच्चे धागे।

कच्चे धागे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी की शब्द रचना थी और नुसरत फतेह अली खां का संगीत। चित्रपट संगीत में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं असीम रजा का लिखा हुआ यह गीत। अनु मलिक का संगीत है, आवाजें हैं राहत फतेह अली खां और साथियों की, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म कलयुग से।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 हुए हैं। समय है युवा साथियों के कार्यक्रम युवा जगत का।

ये था फिल्म कलयुग से लिया गया गीत। राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ें थीं, असीम रजा की रचना थी और अनु मलिक का संगीत। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है।

नमस्कार साथियों, युवा जगत में मैं श्रुति गौरहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे मालूम है इस चिलचिलाती गर्मी और धूप से हलाकान और परेशान होंगे, जैसे कि हम सभी हैं। वो तो खैर मैं भी हूँ, पर राहत पर साथ ही जानने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिनों तक लू चलने वाली है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 44 डिग्री दर्ज किया गया है। दोस्तों, कुछ दिन बस इस गर्मी को और झेल लीजिए, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, जिससे लगभग पूरे भारतवर्ष में वर्षा होती है, इसके 26 मई के आसपास केरल के तट पर पहुंचने के आसार हैं। पर अभी कुछ दिनों के लिए गर्मी से अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम युवा ये सोच लेते हैं कि हम तो अभी युवा हैं, हमारी उम्र ही क्या है, हमें कुछ नहीं होता, इस गर्मी वर्मी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। जब तक हम खुद स्वस्थ और सशक्त नहीं रहेंगे, हम अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे? याद रखिए, दूसरों की मदद करने के लिए भी पहले हमें खुद पर काम करना होता है। पहले हमें उस लायक बनना पड़ता है कि हम किसी की मदद कर सकें। दोस्तों, हमेशा हम पर्यावरण के किसी न किसी विशेष जीव के बारे में बात करते हैं, तो चलिए आज बात करते हैं उस छोटे से जीव की जिससे हमें प्राकृतिक चाशनी मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी और उससे मिलने वाले शहद की। दोस्तों, आज है वर्ल्ड बी डे, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस। ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों की अमूल्य भूमिका को रेखांकित करना है। मधुमक्खियाँ मानव जाति की खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता का आधार हैं। सन 2018 से हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चुनने के पीछे की वजह यह है कि इस दिन आधुनिक मधुपालन तकनीक के जनक एंटोन जानसा का जन्म हुआ था। मई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में मधुमक्खियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार चेतावनी दी थी कि यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां गायब हो गई तो मानव जाति के पास जीने के लिए केवल 4 साल बचेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा एक स्टेटमेंट आ गया, ये लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए आपको इसके कारण के बारे में बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 75% से 90% खाद्य फसलों और जंगली फूलों के पौधे अपने परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर होते हैं। अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो सभी फूल फल और फसलों सब्जियों की पैदावार बुरी तरह प्रभावित होगी। चलिए अब बात करते हैं स्वीट रिवॉल्यूशन, यानी कि मीठी क्रांति की। भारत सरकार देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए स्वीट रिवॉल्यूशन चला रही है। भारत दुनिया में शहद उत्पादन के मामले में शीर्ष देशों में शामिल है। मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत और कम जमीन में अतिरिक्त आय और साथ ही साथ रोजगार का एक बेहतरीन जरिया बन चुका है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य और वन आच्छादित जिलों जैसे कि दंतेवाड़ा, सरगुजा, राजनांदगांव, कवर्धा में मधुमक्खी पालन तेजी से फैल रहा है। यहाँ कई आदिवासी बस्तर हनी जैसे ब्रांड्स के तहत शहद उत्पादन और व्यापार कर रहे हैं।

से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शहद के अलावा मधुमक्खी पालने से मोम, रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसे मूल्यवान उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनकी बाजार में भारी मांग है। दोस्तों, मधुमक्खियों पर और मधुमक्खी दिवस पर हम आगे भी बात करेंगे। आज का हमारा क्रम है युवा पसंद, और इसके लिए हमें आपके मेल्स मिले हैं। आपने हमें बहुत सारे ईमेल्स किए हैं, जिनमें है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, आर्यनगर से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि और अश्विन शाह ने, साथ ही मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। आपकी पसंद पर लीजिए सुनिए 16वां साल फिल्म का ये गीत। आवाज़ है हेमंत कुमार की, संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने और गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब लीजिए आपके सवाल जवाब के जवाब। हमने पिछले बुधवार को यानी कि 13 मई को आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो चलिए आज जानते हैं उनके जवाब। तो पहला सवाल था, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जवाब है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस समय मॉनसून की शुरुआत होती है, तो इसके बाद सीधे आप पेड़ लगाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा सवाल था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जवाब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तीसरा सवाल था, गूगल मैप्स जैसी एप्लीकेशंस मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं? तो गूगल मैप्स जैसी एप्लीकेशन GPS आधारित होती हैं। इसका मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चौथा सवाल था, COP समिट मुख्य रूप से किस विषय से जुड़ा है? तो आप जानते होंगे कि COP समिट जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से जुड़ा हुआ है। आखिरी सवाल था, कौन सा देश लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है? तो इसका जवाब है जापान। हमें इन सारे सवालों के आप श्रोताओं ने बहुत सही जवाब भेजे हैं, तो लीजिए नोट कीजिए आज के सवाल। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी? दूसरा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन है? तीसरा सवाल है, काराकोरम दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? चौथा सवाल है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? पांचवा और अंतिम सवाल है, सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? आप इन सभी सवालों के जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं, yj.air.bilaspur@gmail.com। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा, तो इस ईमेल पर अपने जवाब जल्द से जल्द भेजिए। तो चलिए आते हैं अपने युवा पसंद के क्रम पर। तो हमें ईमेल किया है देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश रामकिशन, दुलीचंद, सतीबाई साहू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल, चंपा साहू ने, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आपकी पसंद पर लीजिए सुनिए फिल्म हमराज का ये गीत। अब इसे अपनी आवाज़ से सजाया है महेंद्र कपूर ने, संगीतबद्ध किया है रवि ने और गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की। तो आज मानवीय गतिविधियों के कारण इन छोटे छोटे नन्हे जीवों का अस्तित्व दांव पर लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग, खेतों में छिड़के जाने वाले जहरीले केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जैसे नोइसिकोटिनॉइड्स मधुमक्खियों के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर रहे हैं। साथ में शहरीकरण और वनों की कटाई भी एक बहुत बड़ा कारण है जो लगातार मधुमक्खियों के लिए खतरा बना हुआ है। कंक्रीट के बढ़ते उपयोग से मधुमक्खियों के प्राकृतिक आवास और फूलों के स्रोत खत्म हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भी मधुमक्खियों के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहे हैं। तापमान में असमय उतार चढ़ाव के कारण फूलों के खिलने के चक्र और मधुमक्खियों की सक्रियता का तालमेल बिगड़ रहा है। दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अपने घरों या बालकनी में फूलों के पौधे लगाएं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह जैविक खादों का उपयोग करें, वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दें। मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने वाली कीट नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य की सूचक हैं। आवश्यक बात यह है कि प्रकृति के इस अनमोल उपहार को बचाने का संकल्प हमें लेना होगा, क्योंकि उनका अस्तित्व ही हमारे भविष्य की गारंटी है। तो कीटनाशकों का उपयोग घटाएं, नन्ही मधुमक्खियों की जान बचाएं। चलिए लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा ने। दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। आपकी पसंद पर लीजिए सुनिए दिल तो बच्चा है जी फिल्म का ये गीत। इस गीत को आवाज दी है मोहित चौहान ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम चक्रवर्ती ने और गीतकार है नीलेश मिश्रा।

दोस्तों, आप घड़ी ने इशारा कर दिया है, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पर जाते जाते कुछ लाइनें तो ज़रा गौर कीजिए। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा ज़रूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है। अमेज़न के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, तो हिमालय के ग्लेशियर्स पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म है, लेकिन जिसमें पैसे भी बन सकते हैं। लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वो कविता में हो या जीवन में। दोस्तों, इन लाइनों से मुझे कुछ सीखने को मिला और मुझे कुछ प्रेरणा मिली, इसीलिए मैंने ये लाइनें आपके साथ साझा की। मिलते हैं युवा जगत के अगले क्रम में और भी गीतों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, विदा दीजिए श्रुति गौरा को। नमस्कार।

20 मिनट पर और संध्या 7 बजे से भी। ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा पराकरण और उत्पादन विधि। सफल कृषक से भेंट कराएंगे, साथ ही मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी हम साझा करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही रात्रि 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। श्रोताओं, आइए जानते हैं कल के कुछ प्रमुख आकर्षणों को। कल गुरुवार दिनांक 21 मई हमारा दैनिक प्रसारण आरंभ होगा प्रातः 5:51 पर। खेती की बात में 6:30 पर सुनिए ग्रीष्मकालीन बरसीम के खेती विषय में जानकारी। चिंतन का प्रसारण होगा प्रातः 6:45 पर, विषय होगा नाम की सार्थकता, आलेख डॉक्टर शोभा खान झा का होगा।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण भी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सदाबहार नगमे सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर और नए तराने हमले कराएंगे 10:30 से। फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद लिया जा सकेगा कल दिन में 10 बजे से। कल दिन में 11 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की अगली कड़ी। शाम 4 बजे दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

कल शाम 5 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। ग्राम सभा में कल शाम 7:20 पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी में क्रम है हेलो किसानवाणी का। इसमें नील हरित काई एवं हरी खाद के उपयोग की जानकारी देंगी विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी। संचालन करेंगे महंगू भैया। साथ ही मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी हम साझा करेंगे। समय होगा शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे तक। श्रोताओं के पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिली हम लेकर आएंगे कल रात 8 बजे। रात 8:20 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी में सुनिए नील हरित काई एवं हरी खाद के उपयोग के विषय में जानकारी देंगी विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी। संचालन करेंगे महंगू भैया। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही 11:10 पर हमारा कल का प्रसारण संपन्न होगा। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ पलों में रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। उप मुख्यमंत्री है आज रायपुर में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा के करें शुभारंभ।

फार्म 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के करें रवाना। स्कूल शिक्षा विभाग ह अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के करे है आदेश जारी। और दवाई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई व्यापारी मन दुकान राखिन बंद। अब समाचार विस्तार ले। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज रायपुर पुलिस परेड मैदान में डायल 112 फेस टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा के शुभारंभ करीन। ये मौका में उमन 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के रवाना करीन। उमन कहिन की पहली डायल 112 सेवा सिर्फ 16 जिला तक सीमित रहीस, जेकर बढ़वार अब प्रदेश के सबो 33 जिला में कर दे गए है। उमन यहू बतेन कि सबो गाड़ी में आधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक हवे। डायल 112 में पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल इमरजेंसी, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन और हाईवे इमरजेंसी जैसन सबो आपातकालीन सेवा ले जा सकत है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के आदेश जारी करे है। ये नवा दर सरकारी स्कूल के संगे संग आत्मानंदी स्कूल और अनुदान मिले विद्यालय मन में घलो लागू होही। जारी आदेश के मुताबिक हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थी मन के स्थानीय शुल्क 410 रुपया ले बढ़ा के 500 रुपया करे गए है। उन्हें उच्चतम माध्यमिक स्कूल के लयिका मन ला 445 रुपया के जगह 550 रुपया देवर पढ़ी। विभाग के मुताबिक नवा दर अवैया शिक्षा सत्र ले लागू हो जाही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ले उर्वरक लेना मुश्किल हो जाते। ओमन रासायनिक उर्वरक मां निर्भरता कमती करे बर जैविक खेती मां ज्यादा जोर दीन। श्री चौहान कहिन कि वैश्विक चुनौती के बादों केंद्र सरकार किसान मन पर पर्याप्त खातु आपूर्ति सुनिश्चित करे के प्रयास करत है। ओमन छूट वाले खातु के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दीन और राज्य ले नकली और घटिया किस्म के खातु के आपूर्ति करैया मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे बर किहिन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के अगुवाई करीन, जेमा अवैया नीट UG के फेर ले परीक्षा के तैयारी ला देखीन। परीक्षा के आयोजन में ईमानदारी और साफगोई के जरूरत में जोर देव श्री प्रधान निर्देश दीन कि पाछू परीक्षा में जौन कमी रहीस तेला दुरियाए जाए। बैठक के बेरा सबो राज्य के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के संग मिलके बैठक करे के निर्देश देगी, जेकर ले परीक्षा के व्यवस्था बने ढंग ले होवे। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधा के बढ़फार करे जाही। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्था महादेव कावरे रायपुर में समीक्षा बैठक करीन। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंक के प्रतिनिधि संग्रीन, सहकारिता आयुक्त बैंक ला मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसन सुविधा शुरू करे के निर्देश दिन है। एकर ले प्रदेश के सहकारी बैंक में डिजिटल सेवा ला बढ़ावा मिली और लोगन ला बने सुविधा मिल सकी। भारतीय सेना कोती ले अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पद पर हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे गए है। ये परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 जिन उम्मीदवार मल्ला सफलता मिले है। परीक्षा के नतीजा भारतीय सेना के वेबसाइट में हवे और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड में घलो देखे जा सकत है। पास हुए उम्मीदवार मल्ला काली 21 मई के बिहनिया 9 बजे सबो दस्तावेज संग नवा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होए बर पड़ी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। राज्यपाल रमन डेका आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ले भेंट करीन। ये दौरान राज्य में पर्यटन वाले जगह के बढ़वार और पर्यटक मन पर बने सुविधा ला लेके गोट बात हुई। राज्यपाल चित्रकूट जलप्रपात, गंगरेल बांध और बूका जलाशय में पर्यटन सुविधा के बढ़वार में जोर दीन। उमन कहिन की ये जगह में पर्यटक मन पर जरूरी सुविधा के बढ़वार करे जाए, संगे संग वरिष्ठ नागरिक मन पर ज्यादा सुविधा दे जाए। उन्हें कोरबा जिला के बुका जलाशय में क्रूज सेवा शुरू करे के सुझाव दीन। राज्यपाल ने आज लोकभवन में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के परिवार वाले मन भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल तीजनबाई के हाल चाल जानीन और उखर जल्दी स्वस्थ होए के कामना करीन।
तीजन भाई के परिवार वाले मन बताइन कि तीजन भाई के सम्मान में अवैया 7 अगस्त के एक समारोह राखे जाते।

अहमद अंसारी, नवेद अजरा तबस्सुम रायपुर अनई जिला बनारस से, मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। आप हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया। छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबेदा और नसरीन अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन ने। पिपरपारा पालचुआ मुंगेली से हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। ग्राम बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा, वंशिका वर्मा। जांजगीर चांपा से हैं दिलदार मिरी, ज्योति, जानवी, दीक्षांत मिरी। लछनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। आप हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। इसी गीत के लिए कुछ और मेल हैं। देवरी भाटापारा से हैं गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। बोरसरा नैला से प्रमोद साहू, भीमा, वैभी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और उनका परिवार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष, कुमकुम साहू, जगेश्वरी साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, यश, प्रयाण, शिवम वर्मा, अजीत और अमित वर्मा। भाटापारा से ही हैं हिमकेश्वर साहू, करण साहू, चंपा साहू। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ शौर्य नामदेव। पिपरलोट सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कुरासी भैंसा से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज, सुस्मिता, दीपिका साहू। और आप हैं सोंगा जिला धमतरी से रीना सेन, पिंकी, कांति सेन। और महादेव घाट अमलेश्वर से सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म है कालीचरण।

कार्यक्रम में अगले गीत के लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो। गिर्रा पलारी से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू। देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री। रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष, मयंक और जानकी साहू। चंद्रनगर सराहनपुर से कौशल्या जोशी, अजीता जोशी। गोवर्धन रोड से हैं दुर्गा कुमारी। बागबहरा भदरसी से पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन। सादुल शहर राजस्थान से मेल आया है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का। आप हैं हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीक राम देवांगन, रेनू, रंजनी और प्रियंका देवांगन। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, बाबूलाल चौधरी, निर्मला बाई चौधरी, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और उनका परिवार। आप हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज हसन और बाबू अहमद मिफरा। साथ हैं नाज बेबी चाहत। सराहनपुर से सैयद मसरूर शाइना और हसन नाजिया। पलारी से पराग कुमार, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पुन्ना राम, कृष्णा देवांगन। बुड़गान से राम दुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका और भानु। भिलाई से हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा। भानबेड़ा मुंगवाल से हेमंत पटौदी, उमंग पटौदी, मोक्ष पटौदी, जयंती और भारत राम पटौदी। सालेभाटा महासमुंद से हैं जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण कुमार, दिव्यांशी और खेमू ध्रुव। धाड़ी

नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान खान, भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, साई समर्थ, धनंजय कटनकर, अमरावती से कमरुल्ला और नसीम बेगम, आप हैं मछली गोदाम कैदी मुड़ा, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लिल्लू और ऋतु सिंह। इसी गीत के लिए कुछ और मेल हैं, ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेवपारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू घन्नू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत, आप हैं भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। इसी गीत को सुनना चाहा है भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार और आसमा श्याम कुमार, ग्राम नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, बेबी, आराध्या साहू, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, जमशेदपुर से हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, आप हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अवंतिका येले, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके, पलेरा टीकमगढ़ से हमारे श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, सरगुजा मैन पार्ट से रुबीना थापा, रेशमा थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा और आसमा थापा, और आप हैं गौरव, गरिमा, मुकेश, सरिता शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आई सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, स्वर दिया है आशा भोसले ने।

अगले गीत के लिए मेल लिखा है लगान पंडरिया से उत्तम बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल ने। जाखोद से हैं शंभो दयाल खटक, मिमला देवी, अमरजीत सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमारी, पूजा खटक। आप हैं भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मधुबे से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। समडील नौपारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर, राघव गुप्ता। सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, गजन चंदन, पार्थ हयान चंदन। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल और मुजाहिद पटेल। लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या शिवम कोलाम। ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुण्यन चंद्राकर, साहिल चंद्राकर। रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति साहू, डिकेज, वासु डाली, पूर्वेश साहू। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप, गुरलाल सिंह जी। पजनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसलिया, आदर्श कुमार सार्थक और अलौकिक। बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। खैलबाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, भावना मल्होत्रा, लक्ष मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा। और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा,

बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आंखों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

फिल्म ड्रीम गर्ल के इस गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के पहले अंक को देते हैं यही विराम। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में रायपुर केंद्र से विज्ञापन और हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से

0: मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
10: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
8: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
11: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए स्थानीय शुल्क में बढ़ोतरी की। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। और अग्निवीर भर्ती के तहत लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जिलों में आज मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने डायल 112 फेज टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि सभी वाहन अत्याधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है।
12: उस गाड़ी में GPS सिस्टम भी है, कमांड के आने पर लोकेशन साथ में आएगा और उसमें एक मोबाइल भी उस गाड़ियों के साथ है, उसमें अनेक प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं। तो इन सारी बातों के साथ ये इक्विप्ड नई गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां निकल करके आज से ही 112 डायल करने पर रिस्पांस टाइम के समय में ही आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत।

0: हुई है।
1: वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के पुराना पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 16 आधुनिक आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी बलौदाबाजार स्थित रक्षित केंद्र परिसर से डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। यह नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपये की जगह 550 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोरकीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। परीक्षा परिणाम भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कल 21 मई को सुबह 9 बजे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नवा रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होना होगा। प्रारंभिक निर्देशों के लिए उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए यह परीक्षा बीते जनवरी माह में धमतरी में आयोजित की गई थी। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में दवा दुकानें बंद रखीं। बिलासपुर में जिला औषधि विक्रेता के संघ के बैनर तले दवा व्यापारियों ने रैली निकाली। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही है, जिससे मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं छोटी दवा दुकानों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच विभिन्न जिलों के प्रशासन ने आज सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी सेवाएं संस्थाएं महादेव कावरे ने रायपुर में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सहकारिता आयुक्त ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसी सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से तकनीकी सहायता के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को भी कहा। इस पहल से प्रदेश के सहकारी बैंकों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज बिलासपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वक्तन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बदलते समय में रेडियो की पहुंच और उसके महत्व के संबंध में अपने विचार साझा किए।
2: लोगों के दिल से किस तरह से कनेक्ट हुआ जा सकता है, ये आकाशवाणी ने हम सब लोगों को बताया है। और हम लोग पब्लिक सर्विस में है, हमारी लोगों की क्या जरूरत है, लोगों के कल्याण के लिए क्या चीजें बढ़िया है, लोगों के सुखी होने के लिए क्या बढ़िया है, जिसका मोटो ही इतना बढ़िया हो, भोजन सुखाए भोजन हिताए, तो वो तो अच्छे काम करेंगे ही।
1: वहीं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की कार्यक्रम वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि रेडियो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है और लोगों को लगातार जोड़ रहा है।
3: आज 90 साल होने जा रहा है
0: हर श्रोता मनोरंजन के लिए सिर्फ आकाशवाणी नहीं सुनता है बल्कि अपने समग्र विकास के लिए भी जो योगदान होता है अपने जीवन के माध्यमों का, उसी तरीके से आकाशवाणी हमारे जीवन में उपयोगी है। प्रामाणिकता, मौलिकता इस कार्यक्रमों में रहती है। इस जिले में लोगों को, कम्युनिटी को जोड़

0: सुनने के लिए कि पुलिस और पब्लिक किस तरीके से समाज में अपराध को कम कर सकती है, उसका भी एक माध्यम आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग बात करते रहे हैं।
1: वहीं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने रेडियो के महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: कैसी स्थिति रही होगी देश की स्वतंत्रता के बाद, चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे जन जन तक फिल्मी गीत पहुंचाने की बात हो, शास्त्रीय संगीत को सहेजने की बात हो, या जो भी हमारी कला संस्कृति और जो सामयिक चीजें, चाहे समाचारों की बात हो, रेडियो ही एक माध्यम रहा जो उस समय भारत को एक दिशा दे पाया। लेकिन आज जब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, तो रेडियो भी आज आपके साथ न्यूज ऑन एयर ऐप के साथ आपके हाथ में है।
1: वक्तन आज सुबह आकाशवाणी परिसर से शुरू हुआ, जो नूतन चौक सीपत चौक होते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुआ। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आम महोत्सव में पंजीयन और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। यह महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा पश्चिम बिहार और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से उत्तर तेलंगाना तक विस्तारित है। साथ ही प्रदेश में गर्म और शुष्क हवाएं आ रही है। इसके असर कल मध्य छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने और एक दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा

0: राज्य के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए स्थानीय शुल्क में बढ़ोतरी की। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। और अग्निवीर भर्ती के तहत लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर के
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के शेष भाग का। कार्यक्रम में सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए मेल भेजा है पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज अग्रवाल, श्लोक अग्रवाल ने। आप हैं कातल बोर्ड नानघाट से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, टिकेश्वर राजपूत, ऋतु राजपूत। खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया, बेबी हलीमा, बेबी जिकरा और बेबी आयशा। धर्मपुरी से मूसाजी खत्री, ईशाजी खत्री और जाकिर खत्री। सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। आप हैं घनौरी तेलीवाला

निसार से, सलमानी नौशाद, सलमानी बेबी और आलिया अयान बाबू, बाजार रोड मुंगीसार से मोहम्मद जाकिर, मंसूरी कमरून और शबिस्ता फलक। इसी गीत को सुनना चाहा है जलालपुरा जिला सहारनपुर से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन और आविश ने। तखतपुर से हैं मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी। अडारनाथ घाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल गोपी वर्मा ने भी मेल भेजा है। डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। डोंडीलोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा तामुरिया, आरती और प्रभा देवी तामुरिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से

गज भी है, राधिका गज भी है, बेबी अनिष्का और तन्मय गज भी है। डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा तामुरिया, आरती और प्रभा देवी तामुरिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पुरानी भिलाई तीन चरौदा से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दकी, बेगम हमीदून सिद्दकी, जिशान अहमद सिद्दकी, शाहनवाज अहमद सिद्दकी। भाटापारा से हैं सोहन जोशी, पायल जोशी, कुछ और मेल भी इसी गीत के लिए हैं। सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन वर्मा, पल्लवी वर्मा, राजेश्वरी वर्मा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह। आप हैं अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने। अंबई सिल्लोड छत्रपति से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैशाली और वैष्णवी। ततरंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बलवेश पवार, डैनी पवार, मनीष कुमार। मदनपुर से हमारे साथी हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। लुथरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श अतिक। लच्छनपुर से टेकराम यदु, विकास यदु, हेमलता, गीतेश्वरी यदु। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल, नंदनी जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल। चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण, दिनेश, कालिंद्री लहरे। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है श्रेया घोषाल का गाया ये गीत, फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई।

कार्यक्रम में आई श्रोताओं आप सुनते हैं उस गीत को, जिसके लिए मेल भेजा है नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय ने। आप हैं चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक अफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर कौशर। छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसन रजा, गौसिया फातिमा। सोंगा धमतरी से हैं कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन। राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्भी चौहान। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान बोटके और उत्तम जमदाड़े। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लाल मिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। कर्मा चौक लोहारीडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी सुखान, निशान साहू। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, गीतेश संघई। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान खान। पलारी से हमारे श्रोता हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा, निखिल वर्मा। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मातोराव पांचाल। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहांडकर, राही, श्रीमती सरिता गौहांडकर, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश और उनके साथी। आप हैं नागपुर वैशाली नगर से शैलेश गौहांकर, श्वेता, सुमित और ध्वनि गौहांकर। गतौरा से हमारे श्रोता हैं बोधराम, आर्यन, शंकर, अमन, सूरज राठौर, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र श्रीवास, चंद्र प्रकाश लहरे। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। मजनू कटीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता, किसु, ताशु, आनंद, सत्यम, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, कलेश्वर सिंह, सोमार साय, सुखराम पैकरा। हसदा से कमलेश साहू, जितेंद्र, पायल साहू का भी मेल है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के हमारे श्रोता हैं अनीता श्रीवास, छन्नूलाल श्रीवास, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता, विष्णु तिवारी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म बागवां से लिया गया ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के लिए कुछ और मेल भी हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, उनके नाम हम पढ़ दें। आप हैं सनावत से दिलीप मालाकार, बाबूलाल चौधरी, निर्मला बाई चौधरी, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश और उनका परिवार। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा। ग्राम ढेका बिलासपुर से हैं दुखीराम यादव, बुधराम यादव, कुमार यादव।

इस गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंग यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 7:20 हुए हैं, समय है कार्यक्रम ग्राम सभा का।

जय जोहार संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम के मयारू श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ला राम सनी भैया के जोका और राम राम जय जोहार संगवारी हो। तफर्रा गर्मी हर जनावत हवे तो ऐसा ना गर्मी में हम सब ला सावचेती बरतना बहुत ही जरूरी होते। ज्यादा घाम के रहे में घाम ले बचे की कोशिश करो। सफर करे के बेरा शरीर ला कपड़ा या अंगोछी ले तो ढाक लेवाओ। जरूरत के हिसाब ले पानी पियत रहो। गर्मी ले राहत पहुंचाए।

पदार्थ के सेवन करो। संगवारी हो, अभी के समय में गर्मी के कारण डबरी, तालाब, नदिया, नरवा ये बना सुखा गे है या अटावत हवा है, तो संगवारी हो नहाए की जगह जिन हमन पचरी कथन या जिनमें पचरी नहीं बने हैं जिनमें नहातन, तो ऐसा ना जगह के तीर तिखार में जो कचरा बगरे थे, पड़पड़ी बगरे थे, चिरी मन बगरे थे, दतवन के चिरी मन, साबुन की खोखा मन बगरे थे, डिस्पोजल ये जमो कचरा मल्ला सकेल के नष्ट कर देवो। पचरी के तीर तिखार के माटी मल्ला खंती करके तीर तिखार के रुख राय मन के जरी में ढेलवानी दे देवो। ऐसा ना करे ले अड़बड़ प्रकार के काम हो जाते, जैसे कि कचरा मल्ला नष्ट करे ले पचरी की सफाई हो जाते। जी हाँ, हमल 12 महीना नहाना धोना हवाई वो जगह के सफाई हो जाते। दूसरिया पचरी के तीर तिखार के खंती करे ले लद्दी मन के सफाई हो जाते। और तीसरिया रुख राय की जराई में ढेलवानी करे ले रुख राय मन की अवरदा हर बाढ़ जाती। तो संगवारी हो, ये पुण्य काम ल, ये पुनित काम ल चेत करके हर बछर करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए और अपन घर परिवार ल, पारा पड़ोस के जितका संगवारी है ओहू मल्ला ये काम ल करे बर प्रेरित करना चाहिए। और सुनत हन हमार सिंधी शहर हमल्ला काय प्रेरित करते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: संगवारी हो पाछू के कुछ बछर ल पहली ल अगर हम चेत करबो तो हमारे खेती करे के जो तरीका रिसे वो तरीका में आज बहुत कुछ बदलाव आए हवे। हमर किसान भाई बहनी मन पारंपरिक खेती के संगे संग व्यावसायिक खेती घलो में चेत करत हवे। ऐसा ना किसान भाई बहनी मन पर मधुमक्खी पालन और फूल की खेती हर एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हवे। काबर त आज के समय में फूल और मंदरस के बहुत ही मांग हवे। संगी हो फूल के अड़बड़ महत्व है। पूजा पाठ करे के बेरा देवता में चढ़ाथन, बर बिहाव के बेरा में वरमाला जयमाला बनाथन और आई फूल हर नेता या पहुना मन की नरी में स्वागत माला बन जाते। आजकल श्रद्धांजलि सभा घलाऊ में फूल की जरूरत हर पर थे और आई फूल के रस मल्ला चूहक के मच्छे मन हम मंदरस बनाते, जिन मंदरस मन के बाजार में अबड़ेच मांग हवे। संगवारी हो फूल की खेती और मंदरस के उत्पादन बहुत ही लाभकारी खेती हवे। मच्छे मन फूल के रस ले इकट्ठा करके मंदरस बनाते और संगे संग फूल के पराग कोष ल दूसरिया आने फूल में पहुंचाए बर सहायता करते। एक लिए पराग कण के परागण की प्रक्रिया में मदद मिलते और जब फूल में परागण होते तो हमार फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होते। संगवारी हो मच्छे के अड़बड़ कन प्रजाति पाए जाते। कई ठन प्रजाति मन अड़बड़ खतरनाक होते। सियान मन बताते कि पानी डूबे ले नहीं बचावाए कुन मन मच्छे मन, लेकिन जिन मधुमक्खी के हम पालन करथन, जिन मधुमक्खी की बात करथन, ये मधुमक्खी मन बहुत ही सीधा होते। अपन घर भीतरी के कोनो भी कुंटा में मधुमक्खी की ये प्रजाति के पालन कर सकत हो। ये मधुमक्खी मन के छाता पर बक्सा में बिसाव में मिलते। बक्सा के अंदर में छत्ता रथे जिन में मधुमक्खी मन मंदरस ला इकट्ठा करते। मधुमक्खी मन अलग अलग प्रकार के फूल के अलग अलग रस चूसते, जेकर कारण अलग अलग स्वाद वाला अलग अलग गुणवत्ता वाला मंदरस तैयार होते। तो संगवारी हो शहद उत्पादन ला बढ़िया ढंग ले करे बर अपन खेत के आसपास बागवानी और कृषि आधारित फूल वाले फसल की खेती करो। और एक स्थिति कहे गए आम के आम गुठली के दाम, जैसे कि हम मंदरस मधुमक्खी पालन करथन तो मधुमक्खी पालन भी हो जाते, मंदरस भी मिल जाते और फूल के खेती करथन तो हमारे किसान भाई मन ला फूल के भलाऊ लाभकारी फूल की खेती हो जाती है। तो संगवारी हो जिन संगवारी मन मधुमक्खी के पालन करना चाहता हो, शहद उत्पादन करना चाहता हो, वो मन मधुमक्खी पालन और फूल की खेती करो। अब आओ सुनतन एक सुघर लोकगीत जेल स्वर दिया हवे दुखिया ध्रुव अविकर संगवारी मन।

संगवारी हो ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला स्वर दिए रहिन हवे दुखिया ध्रुव अब इकट संगवारी मन संगवारी हो कार्यक्रम के संबंध में सूचना हवे संगवारी हो जमो बिरस्पत

0: और जम्मू शुक्रवार के ऐसा बेरा में 7:30 बजे ले 8 बजे तक आप सब मन के मयारू कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम के प्रसारण होते, जिनमें हमर जम्मू किसान भाई बहनी मन खेती किसानी ले जुड़े जानकारी जैसे पशुपालन, कुकरी पालन, मछली पालन सहित और आने बाने के जानकारी ले बर फोन करके सवाल पूछता हो और समाधान पाए बर फोन करता हो। तो यही क्रम में अवैया बृहस्पत के यानी कि कल 21 मई 2026 के हमार स्टूडियो में फिर रिकॉर्डिंग हुई, जिन में 10:30 बजे ले 11 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवाए नील हरित काई और हरी खाद के उपयोग और 11 बजे ले 11:30 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवाए प्राकृतिक खेती के महत्व। संगवारी हो विषय ल मैं एक बीत आऊ बता देता हूँ, जुन 10:30 बजे ले 11 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवाए नील हरित काई और हरी खाद के उपयोग और 11 बजे ले 11:30 बजे तक जो दूसरिया रिकॉर्डिंग होते ओकर विषय हवाए प्राकृतिक खेती के महत्व। ये दोनों विषय में हमार समस्या के समाधान करे बर हमार बीच में विशेषज्ञ रही, हमार पहुना रही डॉक्टर शिल्पा कौशिक, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। ता लौहा लौहा हमार फोन नंबर ल लिख लेवाओ, हमार फोन नंबर हवाए 0-7752-66-592। संगवारी हो जुन पहले रिकॉर्डिंग के प्रसारण होही वही दिना यानी कि कॉलेज 21 मई दिन बृहस्पत के ऐसन है बेरा में 7:30 बजे ले 8 बजे तक और जुन दूसरी रिकॉर्डिंग होही ओगर प्रसारण हर 22 मई 2026 दिन शुक्रवार के ऐसन है बेरा में 7:30 बजे ले 8 बजे तक एकर प्रसारण हर होही। तो संगवारी हो कुछ कुछ खास बातें माऊगी कि जब आप मन फोन लगाओ तो कुछ कुछ सावधानी बरतिया, जैसे कि सफा कोने में टावर रहे तीसरा जगह हम खड़ा होकर फोन लगावाओ ताकि तुहर आवाज हर हमर तक पहुंची, तब तो आप मन से सीधा हम संपर्क कर सकबो। दूसरिया संगवारी हो जेन मेर भी रिहा तो मेर शांत रहे, बाजार हाट मत रहे, कुकुर बिलाई मन मत रहे, लेकिन पिचकर मन की आवाज हर झन आवत रहे, तो शांत जगह में होके सवाल पूछिया तो बढ़िया ढंग ले समझ माही और उत्तर देवर हमन भी अच्छा लगी। तीसरिया एक और विषय है संगवारी हो को जिन विषय हवाए वही विषय में सवाल पूछे की कोशिश करो ताकि विशेषज्ञ मन आपके सवाल के बढ़िया ढंग से समाधान कर सके। तो संगवारी हो ये तो हुई कार्यक्रम के संबंध में सूचना और आप मन पर लेके आए हैं भेंट वार्ता जिकर विषय हवाए सफल कृषक से भेंट और इमर जानकारी देवत हवाए श्री धर्मेंद्र कुमार केवट और संतोष कुमार केवट ग्राम डगनिया और अबड़ अकन डंगनिया हवा संगवारी हो। तो कौन से डंगनिया है? तो खैरा डंगनिया जिला बिलासपुर और ये मन हर साग भाजी की खेती पशुपालन और बागवानी के बारे में जानकारी देवत हवा और इकर सो गोड बात करत हवा हमर नंदू भैया। तो नंदू भैया चलो जानकारी ला शुरू कराओ।
1: राम राम जय जोहार भैया।
2: राम राम भैया राम राम।
1: संगवारी हो आज हम आए हैं गाँव खैरा डगनिया और नदिया के बढ़िया तीर तखार में हवा हमारे गाँव हर अतेक सुघर गांव में हमन बारी बेला में भैया मन के खेत में हमन बैठे हवन और गोठ बात करत

0: तो का काम बूता चलत हवे आप मन के?
1: अभी मोर खेती किसानी और खेती बाड़ी ही चलते।
0: अच्छा, का का फसल अभी के बेरा मा लगाए हैं आप मन?
1: अभी तो मैं बाड़ी बस लगाए हूँ, जो भिंडी की खेती कर रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, और बरसात में धान के भी खेती करते हैं, और साग सब्जी जो है ना, भिंडी के जो है जनवरी नया साल में लगा रहे हैं, तो करीब हम आधा एकड़ में ना 1 किलो बीजा लगा रहे हैं, जगह अभी अभी तक वो निकलते है फसल है।
0: आओ, का का फसल ले था?
1: तो फिलहाल गर्मी में तो भिंडी ही लगाए हूँ, और बरसात में ना 3-4 प्रकार के फसल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली आषाढ़ लगते तो मूली है, और फिर भिंडी है, जैसे

0: रहथन और साथे साथ ही धान के भी खेती चलते रहते।
1: भैया रमकेरिया जौन लगा था आप मन तवेला कैसे लगाए जाते, माटी उटी के तैयारी बर कैसे करते?
0: अब देख लिए जैसे कि धान जैसे लुआते धान लुआ के बाद जैसे नया साल लगते ना जनवरी वो बढ़िया से हमन पहली जमीन का अच्छे से जोताई करना पड़ते, तीन बार चार बार जितना हो सके गहरी जोताई करवे, ओखर से माटी उपजाऊ होते, फिर वहाँ रोटोवेटर करवा के फिर वहाँ मादा खींचते हैं जिसको हम मेड़ बोलते हैं, तो वहाँ का जैसे कि जमीन

0: हमें बढ़िया रहते हैं फर्स्ट।
1: बीजा जौन है तो कतेक बीजा के आवश्यकता होते हुल बताहु।
0: अब वो बीजा जो है किसान के ऊपर रहते, कई झन किसान कहा करते एकदम नजदीक नजदीक में ही लगा देते।

0: किलो में एक एकड़ हो जाते और जो नजदीक में लगाते हो तो 3-4 किलो भी लगा देते। वो किसान अपन अपन अनुभव हिसाब से खेत करते, लेकिन हमन जो है ना दूर दूर में लगाथन देखर से पौधा बढ़िया पेड़ आगे कंसा दे के आखिर उसके कन फसल हो जाते।
1: बहुत बढ़िया जानकारी बताते भैया मन नंग अब्बड़ दिन में भेंट करे हन संगवारी हो और देखो संगवारी हो आओ हमन गोठ बात ला आगू बढ़ाबो। भैया जैसे हमन रमकेरिया लगाए हवन और ओमा कहूँ करपाना डारा में रोग बीमारी आ जाते तो कौन प्रकार के चेत रखना चाहिए जेकर ले हमर आओ किसान भाई मन लगाए है ते मन बढ़िया उकर सावधानी रखे और उनकर फसल हर बढ़िया होवे।
0: इमा जो है ना

0: तो ओखर लिए दवाई मा जैसे पहले तो हमन सस्ता वाला दवाई छींचथन, कोरांडा है, लीथल सुपर है, वो सबको छींचथन। और जैसे ओमा नहीं काम करे ना तो फिर ओखर से महंगा वाला दवाई आते जैसे इमीडा क्लोरोपीट जेकर सोलोमोन नाम से आते, वो मोर लिए एकदम बेस्ट है दवाई। मैं वो दवाई के बहुत पसंद करे हूँ। ओमा जो है ना जैसे फल छेदक कीड़ा और माहो वाला है, जितना उड़े वाला कीड़ा है वो सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत बढ़िया दवाई है, सोलोमोन नाम से आती है, जो इमीडा क्लोरोपीट इमीडा साइक्लोथिन ऐसे नाम करके दो नाम के टेक्निकल है।
1: बढ़िया बताया हो भैया। और देखो गर्मी के बेरा में हमन लगाथन तो पानी कांजी के हर जीव जंतु ला मनखे ला आवश्यकता होते, फसल में तको पानी के अब्बड़े महत्व रही। सिंचाई के सुविधा बर का साधन है एलो बताओ सर।
0: अब सिंचाई के है कि भी हमन ट्यूबवेल से ही पलोथन, बोर है उमा से, और हमारे यहाँ ना नदी किनारे है, बाड़ी वाड़ी है, जैसे बोर नीर से तो मोटर पंप से भी नदी से पानी खींच के ही पलोत रहे। और अभी जो है अभी ट्यूबवेल से ही पलोथन, तो पलवाई जो है ना मिट्टी के हिसाब से दहल पड़ता है पानी का, जैसे के कन्हार माटी में लेट में दहल पड़ते है, और हमारे तिबर के रेतीला मिट्टी है तो वह कचरी जगह बोलथन, चार दिन के चार दिन पानी में से पलोथन, जिससे सूख जाते तो फिर पानी देते हैं।
1: बढ़िया जानकारी बताए हो भैया। रमकेरिया लगाए हवाओ तो ये फसल के जौन उत्पादन कतेकन हो जाते और बढ़िया एकर रोजी मजदूरी मिल जाते?
0: हाँ, ये मेहनत करवे तो मेहनत बेकार नहीं जाए। ये जैसे कि धान के खेती करवे या कोई भी परंपरागत खेती जो करवे ना, ओखर से अच्छा होते है सब्जी खेती में। जैसे कि मैं रमकेरिया लगाए हूँ तो मैं जिसमें एक किलो बीजा लगाए हूँ तो मैं रोज के जो है ना चार कैरेट पाँच कैरेट भिंडी तोड़ाई करता हूँ, तो उमा के जैसे कि दो तीन कैरेट का मंडी ले गया था और दो कैरेट का ना बाजार में ही आसपास गांव के बाजार में ही बेच लेते, जो घर से मोर रोजी रोटी वगैरह बढ़िया चल जाते।
1: बहुत बढ़िया जानकारी बताया भैया। आओ जानना चाहबो हमन देखा था नहीं दे आप मन गाय गरुआ रखे है तो कते कन पशुपालन करत हो?
0: हमारे घर भैया करीब कोई आठ अकन ठन गाय रखे है, जेमा दो ठन बछड़ा है।
1: अच्छा,
0: और बाकी मन गाय है।
1: तो गाय गरुआ बर गर्मी के बेरा मा कैसे चेत रखते उमन के खान पान के?
0: अब वो चेत ओत के भैया जैसे कि उमन का दोपहर के धूप होइस तो पहली से हमारे गरुआ मन का लाला के आदत कर दी है, तो दोपहर धूप में उन बाहर में नहीं रह के घर में ही आ जाते,

0: उपयोग हो जाथे।
1: गाय हर गौ माता के नाव ले जाने जाथे भैया, और एकर हर जिनिस हर काम पड़थे। गाय के जो गोबर है तेकर आप मन कैसे उपयोग करथो?
0: देखा भैया, गाय के गोबर जो है ना सबसे बड़े चीज वही हरे। हाँ, जैसे कि मैं दूध में जितना मतलब फायदा कहे मतलब देखबे तो ओखर से ज्यादा फायदा ओखर गोबर।

0: खाद बनाथन जो हर जैसे कि मार्केट में जो मिलते खाद ओखर से कतको के बेस्ट रहते। एक बार डाल दिए 3 साल तक के असर रहते, जो गोबर के खाद जो बनते बोले खेत में डाल देन ओखर असर जो है ना 3 साल तक के खेती में रहते। तो ये सब चीज के देखे जाए ना तो गाय के दूध से भी ज्यादा फायदा गाय के गोबर से ही।
1: और खेती किसानी के संग दोनों काम आ जाते, धान पान के पैरा हर गाय गरुआ बर और गोबर पानी हर खेती बर। अब बड़ सुघर जानकारी बताया, जानकारी दिया तेकर बर जय जोहार धन्यवाद।
0: जय जोहार धन्यवाद।
1: तो हमन गोठ बात करबो आज अउ अब्बड़ दिन माय हन अउ देखत हन एदे बढ़िया से अमचूर सुखात हवय, बारी म हमन बैठे हवन छाव म लिमाऊ के तीर म अउ गोठ बात म भैया मन बताही। तो राम राम जय जोहार भैया।
2: जय जोहार। जय जोहार। मोर नाम संतोष कुमार है, गांव खैरा रेगनिया है और मैं छोटे किसान हूँ। दूढ़ाई कर जमीन है और मैं अभी लगाए हूँ लौकी है, कोहड़ा है और तुम्हार डोड़का है और बरबट्टी है, ऐसे करके फिर सबे लगे है

थोड़ा ओमा लाइन के लाइन पहली पानी के साधन पलवन बर आओ बीच में माने तीन तीन हाथ के बाद में घुचुआ कोड़ के एक एक किलो गोबर खट्टा करके वो पौधा वाला हमन रोपण करथन ओकर से भैया ओमा बहुत जल्दी पौधा तैयार होते।

0: करीबन एक पाव की मात्रा से डाल के ओकर सिंचाई 15 दिन करना है। ओकर से कीड़ा नहीं लगे और खाए में नुकसान भी नहीं है किसान ला।
1: जैविक हो जाते हो?
0: जैविक माने जैविक हाँ। खाद भी हो गए और जैविक कीटनाशक भी हो गए भी अपन हाथ के बनाए, तो इमा खाए में नुकसान भी नहीं है। और मैं

0: वो है, फर भी है, फूल भी माते है और थोड़े थोड़े सब चीज का बोए भैया, तो थोड़े थोड़े सब चीज लिखते हम। तो एकर से जैसे डोड़का में नुकसान हो गए, कोहड़ा में नुकसान हो गए, तो ओकर नुकसान है बरबट्टी में बांध गए। अमर से मतलब जनरल खेती घाटा नहीं हुए, चार आइटम लगे है तो चार आइटम के एक दू के रेट का पाबे, फसल का बढ़िया पाहो सब तो नहीं जाए। ऐसे करके हमन 15 जन होठन भैया अपन परिवार में, और हमारे रोजी रोटी आराम से चलत है और हमारे परिवार खुशहाल है।
1: बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया हो भैया। फसल में पानी के बड़े महत्व रहते भैया, तो ए पानी के व्यवस्था बर सिंचाई।

0: दिन में पानी ढेर पड़ते तो ओला भरना भी नहीं है, ओ समस्या ही केवल ढार रेगाना है। जो लाइन बनाए है हमन पौधा में जेरी जेरी में केवल ढार रेगाना है भैया, ओ चाहिए नार वाला चीज का, भरना नहीं है। पर पलोय की पद्धति हरावा है।
1: आमा नींबू घलाव है और ये दे सीताफल है पपीता है, एकर फायदा आप मन लेता हो देखो। अमचूर घलाव सुखो है, का का उपयोग करता हो एकर?
0: अब एकर ऐसे है भैया, जैसे गैया रखे हैं तो 4-5 लीटर जैसे दूध हो गए तो घर में उपयोग करथन खाए पिए बर।
1: अच्छा।
0: अपन ले बांध गए तो किसान कोनो आई तो चंडी बांधवा दी रही थन, घी हो गए ओहूला बेच दे थन, अमचूर अटे सुखाते तो अपन जरूरत के पूर्तल रखथन, नहीं तो ओहूला दे रही थन दुकान में।
1: आमा उमा है
0: टेला, आमा उमा है टेला और नींबू है टेला, तिलहरों बेची थन जाई थन बाजार में तो 5-10 रुपया के आओ ज्यादा है तो मंडियों में सप्लाई करथन, ऐसे करके हमारे रोजी रोटी है चलते,
1: उत्पादन बढ़िया हो जाते।
0: हाँ, उत्पादन बढ़िया हो जाते
1: और खाए की पूर्ति भी हो जाते।
0: पूर्ति भी हो जाते।
1: बढ़िया जानकारी बताया भैया ये।

0: उपयोग नहीं करी, कारण के जल स्तर नीचे जाते तो ओकर से नुकसान भी नहीं होना है, तो कुआं से चलते भैया, तो अभी कुआं सुखा गए तो बोर से चलत।
1: लौकी डोड़का और नार वाला जो फसल है तेमा हमन कते कते कन पानी दिहीन तो फसल हर बने होही?
0: वह हर भैया ऐसे है कि ओला ना अब हमन कचरी में लगाए भैया, तो हफ्ता में दो बार पलोवर पड़ जाते भी की स्थिति में।

0: और अतेक बढ़िया जानकारी दिए है भैया, तेकर बर धन्यवाद, जय जोहार।
1: जय जोहार।
2: संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें सफल कृषक से भेंट, जिन मा जानकारी देवत रहिन हवे श्री धर्मेंद्र कुमार केवट और श्री संतोष कुमार केवट, ग्राम डंगनिया, खैरा डंगनिया, जिला बिलासपुर। और एवं जानकारी देवत रहिन हवे साग भाजी की खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में और बागवानी के बारे में। और इंकर सो गोड़ बात करते से हमर नंदू भैया हर। और संगवारी हो, हम बता देवत हैं आप मतलब कार्यक्रम के संबंध में सूचना। तो संगवारी हो, जमो बृहस्पति और जमो शुक्रवार के ऐसा नहीं बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक आप सबके मयारू कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम के प्रसारण होते, जिन हमर जमो किसान भाई बहनी मन खेती किसानी जुड़े जानकारी जैसे कि पशुपालन, कुकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन सहित आनी बानी प्रकार की जानकारी ले बर फोन करता और समाधान लग पाता। तो यही क्रम में अवैया बुधवार के 21 मई, अवैया बृहस्पति के 21 मई 2026 के हमार स्टूडियो में फिले रिकॉर्डिंग हो ही, जिनमें 10:30 बजे ले 11 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवाए नील हरित काई और हरी खाद के उपयोग, और 11 बजे ले 11:30 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवाए प्राकृतिक खेती के महत्व। ये दोनों विषय में हमार समस्या के समाधान करे बर हमार बीच में पहुना रही डॉक्टर शिल्पा कौशिक, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। तो हमन के फोन नंबर ले लिख लेवाओ, हमार फोन नंबर हवाए 0-7752-665-92। संगवारी हो, जोन पहली रिकॉर्डिंग हुई एकर प्रसारण हर कालेज हो जाही ऐसा है बेरा मा 7:30 बजे ले 8 बजे तक, और जोन दूसरिया रिकॉर्डिंग हुई ओकर प्रसारण हर हुई 22 मई 2026 दिन शुक्रवार के ऐसा है बेरा मा 7:30 बजे ले 8 बजे तक। तो संगवारी हो, सूचना सिरावत है और आओ सुनथन छत्तीसगढ़ी लोकगीत, जिनला स्वर दिए हवाए बैतल राम साहू।

मैं कैसे करूं सगा गा भैया गा तेरा जन सगा लेके समधी अवैया संगवारी हो। सचमुच में जब घर में पहुना मन आते ना तो सोचे पड़ जाते कि अधिक जन पहुना आते तो कौन प्रकार की कर आओ भगत करवो। ये सुघर भाव भरे गीत ल स्वर दिए रही नावे बैतल राम साहू अविकर संगवारी मन। अब हम बात करबो आज के मंडी के भाव के बारे में, ताकि हमर किसान भाई बहनी मन मंडी के भाव की जानकारी लेके अपन उत्पादन साग भाजी या जो भी हावे ओला बाजार में लेके की कोशिश करो। तो संगवारी हो, महामाया धान के भाव हर रही से आज 2390 रुपया प्रति क्विंटल, सरना के भाव हरी से 2200 रुपया प्रति क्विंटल, आईआर 36 धान के भाव हरी से 1900 रुपया प्रति क्विंटल, और लिमाऊ के भाव हरी से 4400 रुपये प्रति क्विंटल, मखना बेचावत रही से 1000 रुपये प्रति क्विंटल और 1200 रुपये प्रति क्विंटल घरविकर भाव हरी से, कुंदरू के भाव हरी से 1200 रुपये ले 1400 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता हर 1500 ले 1700, दरमी हर 7500 ले 8000, कलिंदर हर 1300 ले 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिचावत रही से। पत्ता गोभी के बात करबो बंधा गोभी जिन्हें बोलथन यह 700 रुपये ले 900 रुपये प्रति क्विंटल, चौलाई भाजी हर 1300 रुपये ले 1500 रुपये प्रति क्विंटल, करेला के भाव हर 3000 रुपये ले 3200 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी हर 1400 ले 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचावत रही से। रमकेलिया की बात करबो तो रमकेलिया हर 1800 ले 2000 रुपया, कटहर हर

1200 1400, कोचाई हर 1800 2000 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिचावत रही से। चुकंदर की बात करबो तो 1200 रुपया ले 1400 रुपया, मुर्राई हर 1400 रुपया ले 1600 रुपया के भाव से बिचावत रही से। गोंदली की बात करबो तो संगवारी हो, अभी गोंदली के भाव हर ज्यादा बढ़े हुए नहीं है, नहीं तो यह बहुत आसमान में आंसू निकाल रहते थे। तो अभी यह 1000 रुपया ले 1200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गोंदली बेचावत रही से। आलू हर 1300 रुपया ले 1500 रुपया के हिसाब से बेचावत रही से। गाजर हर 2400 ले 2600। सेव सेव जो फर होते वो हर 9500 ले 9700 रुपया। पताल हर 2200 ले 2400 रुपया। आमा हर 8000 रुपया ले 8500 रुपये दशहरी आमा के भाव से संगवारी हो। और संतरा की बात करबो तो 6000 रुपया ले 6500 रुपया। फूल गोभी हर अभी 1200 रुपया ले 1400 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बेचावत रही से। और भाटा की बात करबो तो 600 ले 800 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से मंडी में एकर भाव हरी से। तो ये तो हुई आज की मंडी के भाव के बारे में जानकारी। अब हम बात करबो आज के मौसम के बारे में। संगवारी हो, आज के अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड और आज के न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रही से। और संगवारी हो, अवैया 2-4 दिन में तफर्रा गर्मी के रहे की संभावना हवा। तो गर्मी ले देखते हुए अपन दिनचर्या चलावाओ। और कृषि परामर्श की बात करबो तो संगवारी हो, जैसे जैसे बरसात लगठियावत जाते हमारे खेती किसानी की तैयारी घलव हर शुरू हो जाते। जब हम खेती करथन तो ये बात की चेत करना है कि हमर खेत हर थारी असन बरोबर दिखत रहे। खचवा डिपरा की चेत कराओ, जेती हर डिपरा है ओला खंती करके खचवा कति फेंक देवाओ। खन कोड़ के खेत ला बरोबर कर लेवाओ। जब खेत बरोबर हो जाही, उबड़ खाबड़ नहीं रही, तब पानी हर खेत की जम्मो मुड़ा में माढ़ी। संगे संग यहू बात की चेत करना है कि हमर खेत के कोन कोन मेढ़ पारमन कमजोर हावे। जेन मेढ़ पार मन कमजोर है उमा डिपरा के माटी ला खनाओ और खन के जो मेढ़ पार कमजोर है वो मेढ़ पार में फेंकाओ ताकि मेढ़ पार मन मजबूत रहे। संगवारी हो, मेढ़ पार की मजबूत के रहे मा पानी हर जमो कति मारथे, पज हिस्से के या ओगरी की संभावना हर कम रहते। जब पानी के सही रख रखाव होते तो हमार फसल तगड़ा होते। संगी हो, मेढ़ पार में ढेलवानी करे के बाद उमर राहिर के या तिली के खेती करो। नवा नवा ढेलवानी वाला मेढ़ में राहिर और तिली मन अड़बड़ होते। संगवारी हो, बखार भुइया ला 4 अंगूर खचवा होना चाहिए। काबर तो पानी पलो की बेरा में खेत में पानी गिराए बर सुविधा पर थे। और गासा भुइया कति की भुइया ला 4 अंगूर डिपरा रखना चाहिए ताकि पानी हर आसानी ले झन अटावे और खेत के चारों मुड़ा में पानी हर बगरे रहे। तो संगवारी हो, एक संगे संग में जोन साग भाजी की खेती करा था तो गर्मी देखते हुए वहाँ पानी पलवत रहो, अपन जानवर मन के देखभाल करो। और एक संगे संग आज के कार्यक्रम ले विदा लेके बेरा हुआ थे तो अपन भाई राम सनील देव विदा। राम राम, जय जोहार।

ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी बिलासपुर में आकाशवाणी के उपलब्धिपूर्ण गौरवशाली 90 वर्ष के अवसर पर आयोजित वाकथान की रेडियो रिपोर्ट। संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का है और प्रस्तुति है नेमीचंद साहू की।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। यूं तो आकाशवाणी बिलासपुर की प्रातःकालीन सभा में एक या दो उद्घोषक होते हैं,

पर आज वो अवसर था जब आकाशवाणी के सभी तीस उद्घोषक, युवा जगत, महिला सभा, किसान वाणी और ग्राम सभा कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले सभी साथी आज सुबह 6 बजे से ही उपस्थित थे, क्योंकि आज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की 90 वर्ष की ऐतिहासिक गौरवपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाने का दिन था और इस अवसर पर आयोजित था वाकेथन। आकाशवाणी बिलासपुर के प्रांगण

मनाने का दिन था और इस अवसर पर आयोजित था वाकेथन। आकाशवाणी बिलासपुर के प्रांगण में हमारी रेडियो श्रोता मोना केवट और एनएसएस की टीम ने आकाशवाणी की 90 वर्ष की उपलब्धि पर आकर्षक रंगोली बनाई थी। रंगोली उत्सव और रचनात्मकता का प्रतीक भी है।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द तो हम रेडियो से सुनते हैं, साथ ही सुनते हैं गीत संगीत, समाचार और ज्ञान विज्ञान की बातें भी। भारतीय जनजीवन, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी के रूप में आकाशवाणी ने लंबा सफर तय किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ही आकाशवाणी का मूल मंत्र है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का सफर 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे और कलकत्ता में दो निजी ट्रांसमीटरों के साथ शुरू हुआ था। तब इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। 8 जून 1936 वह ऐतिहासिक दिन था जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। देश की स्वतंत्रता के बाद इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। भारत का यह सबसे पुराना और सार्वजनिक लोक प्रसारक 8 जून 2026 को अपनी गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूर्ण करेगा। इसी उपलक्ष्य में पूरे भारत भर में फैले आकाशवाणी केंद्रों द्वारा वाकेथान का आयोजन किया जा रहा है। इस वाकेथान का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली, सामाजिक सहभागिता और आकाशवाणी के जन सेवा आधारित मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। आज आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा आयोजित वाकेथान मुख्य अतिथि बिलासपुर के जिलाधीश श्री संजय अग्रवाल और विशेष अतिथि बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक DIG श्री रजनेश सिंह की गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, रेडियो श्रोता, उद्घोषक, कंपियर्स बड़ी संख्या में शामिल थे। मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय अग्रवाल, विशेष अतिथि श्री रजनेश सिंह और श्री एस भारतीयन ने हरी झंडी दिखाकर वाकेथान को रवाना किया। सभी लोग उत्साहित थे। वंदे मातरम, भारत माता की जय के जय घोष के साथ वाकेथान आकाशवाणी परिसर से अरपा नदी पुल तक गया। जब आकाशवाणी की टोली चल रही थी और रेडियो से सुमधुर छत्तीसगढ़ी हिंदी गीत बज रहे थे तो लोग कौतूहल से भरकर देख रहे थे और कुछ लोग तो इस अविस्मरणीय पल को कैमरों में कैद भी कर रहे थे। इस अवसर पर बिलासपुर के जिलाधीश श्री संजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा,
1: आप सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं और जैसा हम सब लोग जानते हैं आकाशवाणी जो है हर एक व्यक्ति से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सुबह जब हम सो के उठते थे पहले तो सबसे पहले आकाशवाणी चालू करते थे कि भजन सुनेंगे। बचपन से ही मैं जो है रेडियो, मेरे पास एक रेडियो छोटा सा हुआ करता था, स्कूल में जाना होता था तो मैं उस रेडियो को इसलिए लेके जाता था ताकि क्रिकेट की कमेंट्री का एक भी बाल मैं मिस न कर सकूं। कई बार मुझे इसमें टीचर से डांट भी खानी पड़ी। तो रेडियो या आकाशवाणी ये सब जो है ना हर लोगों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। उसके बाद न्यूज़ जो है, क्योंकि न्यूज़ का मैं शुरू से ही शौकीन रहा हूँ तो 3 बार 4 बार 5 बार उससे मैं न्यूज़ सुनता हूँ ताकि क्या अपडेट्स है कि वो पता लग सके। विविध भारती गाने का भी सुनने का बहुत शौक था, विविध भारती भी लगातार सुनता था। शाम को कृषक चौपाल या कुछ 7:20 ग्राम सभा, 7:10 से 7:20 की न्यूज आती थी, उसके तुरंत बाद ये ग्राम सभा का होता था, याद है ना, अभी भी आता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही बढ़िया और मुझे लगता है कि ये देश

किसानों का देश है, कृषक और कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है, और हमारी जरूरत के हिसाब से उसमें अपनी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में जो भी जरूरी चीजें हैं उसको इतनी बढ़िया तरीके से, जैसा आप सब लोग कितनी मीठी मीठी आवाज में आप बोल रहे हैं, आवाज आप लोगों की ऐसी होती है कि हर आदमी नहीं चाहते हुए भी वो खुलता ही था कि अच्छी आवाज कम से कम कानों में आए और अच्छी इन्फॉर्मेशन आए। तो इतनी मेहनत करके हम सब लोगों को बताने के लिए, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर 10 मिनट में उन सारी चीजों को कैसे समअप करें ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहुंच सके। ये एक बहुत अच्छा माध्यम के, और जैसा एसपी साहब ने बताया कि आकाश से ये वाणी आती है, तो बहुत ही अच्छा नाम भी बहुत अच्छा है आकाशवाणी। मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, टीवी आने से पहले तो इसी से ही जुड़ा हुआ था, टीवी आने के बाद भी आज भी, जैसे मेरी बिटिया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जब प्लान कर रही थी तो एक ऑफिसर जो सिलेक्ट हुए उनके पास मैं उनको लेके गया, तो उन्होंने यही बोला AIR इतने टाइम इतने बजे न्यूज़ आती है, ये न्यूज़ जो है वो ज़रूर सुनना है इसमें। तो सोचिए जो यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले लोग हैं वो भी न्यूज़ के लिए AIR पर डिपेंडेंट हैं, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने निकाला। जैसा मैंने बताया कि कैसे लोगों को जोड़ती है आकाशवाणी, अभी हम लोगों ने भाटापारा के श्रोता का नाम हम लोगों ने सुना, जब नाम इस तरह से ले ले करके अगर कोई बोलता है तो लगता है अब मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम आएगा, लोग उससे कैसे कनेक्ट होते हैं ये आकाशवाणी और विविध भारती ने बताया कि आप अपना फरमाइशी प्रोग्राम जो है इसमें किस तरह से अपना नाम भेज करके आप सारी चीज़ें बोल सकते हैं, और आदमी उसके लिए पूरा इंतज़ार करता है और ये भी देखता है कि मेरा नहीं आया तो किसका किसका आया, ठीक है, और मेरा क्यों नहीं आया, फिर वो लगातार प्रयत्न करता होगा। तो मुझे लगता है कि लोगों के दिल से किस तरह से कनेक्ट हुआ जा सकता है ये आकाशवाणी ने हम सब लोगों को बताया है, और हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं, हमारी लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों के कल्याण के लिए क्या चीज़ें बढ़िया है, लोगों के सुखी होने के लिए क्या बढ़िया है, जिसका मोटो ही इतना बढ़िया हो, भोजन सुखाए भोजन हिताए, तो वो तो अच्छे काम करेंगे ही, लोगों के सुख के लिए लोगों के कल्याण के लिए 90 साल की जर्नी ऐसे ही नहीं हो जाती, अगर 90 साल में भी कोई अपने आप को समय के हिसाब से उपयोगी बनाया हुआ है तो उसके पीछे समय के हिसाब से जो टेक्निक्स है, समय के हिसाब से जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुरूप अपने आप को बदलना, और आकाशवाणी ने इस चीज को बहुत ही बखूबी से किया है। इसीलिए आप देखिए पहले किस तरह से उसमें चीज़ें आती थी, अब वो आज के हिसाब से जो ज़रूरत है लोगों की, लोगों को जो समझाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, उसको उस रूप में आकाशवाणी ने अडॉप्ट करके उसके अनुरूप लगातार अपने आप को परिवर्तित करती हुई 1936 का आकाशवाणी और आज के आकाशवाणी में जो अंतर है उसी से समझ में आता है कि समय के हिसाब से हम अपने आप को भी बदले तभी हमारी उपयोगिता होगी, अदरवाइज हमारी उपयोगिता नहीं रहेगी। आकाशवाणी ने इस चीज को बहुत ही बखूबी निभाया है। इस अवसर पे 90 साल पूरा होने पे आप सब लोगों को बहुत बधाई, जल्दी ही 100 साल हमारे कम्प्लीट होंगे, उसमें भी एडवांस में बधाई, और ऐसे ही 125 150 200 साल आकाशवाणी का चलता रहे, हम सब जब तक यहाँ है साथ में रहेंगे, नहीं तो हमारी जनरेशन साथ रहेगी आपके, बहुत बहुत सब लोगों को बधाई।

0: आकाशवाणी के समाचारों को बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। रेडियो से हम गीत संगीत ही नहीं सुनते, वरन हम जीवन को संवारना भी सीखते हैं। इस संबंध में बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह ने अपने संबोधन में कहा,
1: ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि जब हम लोग सामने सामने देख पाते हैं कि जिनकी इतनी प्यारी आवाज, जिनकी इतनी अच्छी आवाज हम लोग को सुनने को मिलती है, वे लोग किस तरह से काम करते हैं। जब हम लोग बड़े हुए, पहले तो बचपन में हम लोग सुनते थे कि आकाशवाणी होती है, ऊपर से होती है, भगवान करते हैं, रामायण में महाभारत में आकाशवाणी हुई, वो

चला गया, वो उधर चला गया, उसको सुनाई दिया। तो बाद में पता चला कि नहीं, आकाशवाणी तो हमारी धरातल में है और इतने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे देश की प्रगति के बारे में हो, देश की योजनाओं के बारे में हो, अपने मनोरंजन के बारे में हो। हम लोग युवाणी आती थी, अभी तो कम सुन पाते हैं, लेकिन पहले हम लोग युवाणी सुनते थे। उसमें बड़ा अच्छा लगता था कि कोई अपने उसमें रिक्वेस्ट भेजता था, तो उसको इस तरीके से कि अभी अभी हमारे पास रुपेश देवांगन जी की चॉइस आई है कि इस फिल्म का ये गाना ये सुनना चाहते हैं, तो लीजिए अब ये पेश है। वो सुन के तो इतनी मौलिकता, इतनी स्वाभाविकता, हम लोग इसको सुनकर बड़े हुए हैं। सिविल सर्विस हो या अन्य एग्जाम हो, हर परीक्षा के लिए, जीवन के अच्छे उच्च आदर्शों के लिए, नैतिक आचरण के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पॉलिटिक्स, हर चीज के बारे में आपको बहुत ही थोरो जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से मिलती है। और यही कारण है कि आज 90 साल होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हर श्रोता, हर इसका प्रेमी जो है, वो जैसे ये सिर्फ फैंसी या अपने जीवन को मनोरंजन के लिए सिर्फ आकाशवाणी नहीं सुनता है, बल्कि अपने समग्र विकास के लिए भी जो योगदान होता है अपने जीवन के माध्यमों का, उसी तरीके से आकाशवाणी हमारे जीवन में उपयोगी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सभी एथेंटिसिटी के लिए जाने जाते हैं कि प्रमाणिकता, मौलिकता इनके कार्यक्रमों में रहती है। और बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, तो कई कार्यक्रमों में आए हैं स्वयं भी, जैसे कि हम लोग अपने इस जिले में लोगों को, कम्युनिटी को जोड़ने के लिए कि पुलिस और पब्लिक किस तरीके से समाज में अपराध को कम कर सकती है, किस तरह से हम लोग अपराध पे नियंत्रण कर सकते हैं, उसका भी एक माध्यम आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग बराबर बात करते रहे हैं आप लोगों से। और आप लोगों के द्वारा भी बहुत सपोर्ट किया गया है पुलिस को, बहुत ही अच्छा उसका परिणाम समाज में देखने को मिला है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि कई क्षेत्रों में हम लोगों ने, चाहे वो महिला बाल अपराध हो, चाहे नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां हो, नशे के खिलाफ अवेयरनेस हो, ये सभी हम लोग कहीं ना कहीं इसमें सफलता पाने में हम लोग सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से आकाशवाणी को इस वॉकथन कार्यक्रम करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे भी इसी तरीके से आकाशवाणी का कारवा, आकाशवाणी का ये क्रम हमेशा चलता रहेगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।

0: रोज सुबह 7:05 पर आकाशवाणी बिलासपुर से ट्रैफिक अपडेट का प्रसारण होता है। सेवानिवृत्त पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री उमा शंकर पांडे जी ये रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भेजते हैं। आइए आज उमा शंकर जी से लाइव ट्रैफिक अपडेट सुनते हैं।
1: आज का ट्रैफिक अपडेट। नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ उमा शंकर पांडे। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय कलेक्टर साहब, SSP DIG साहब, सुप्रिया मैडम,

0: सभी आकाशवाणी परिवार, बड़ा अच्छा लग रहा है। लगभग 90 वर्ष पूरे हो चुके। बहुत छोटा था, हम आकाशवाणी बिलासपुर सुनते थे, रायपुर सुना करते थे उस समय, जब किशन गंगेले, एलजी मंडलोई और ये सब हुआ करते थे। आज अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा आयोजन है। समय न लेते हुए आज सब लोग बोलने, ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: ए भाई

0: जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।
1: वाकेथान में शामिल आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर विवेक दुबे ने अपने संबोधन में कहा,
2: निश्चित तौर पर आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो हर वर्ग में समाज के हर युवा से लेकर वृद्ध जन तक अपने संदेश के माध्यम से, अपनी सूचनाओं के माध्यम से, अपने मनोरंजन के माध्यम से हम सभी के साथ निरंतर पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। आकाशवाणी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, आकाशवाणी ज्ञान है, आकाशवाणी विज्ञान है, और यूं कहिए तो हमारी अपने अंतःकरण का साथी है आकाशवाणी। तो मैं पूरे आकाशवाणी परिवार को आज उसके 90 गौरवशाली वर्ष की बधाइयां देता हूं, और जिस आयोजन को इतना भव्य तरीके से, इतना बृहद स्तर से, इतना अनुशासित तरीके से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बिलासपुर के नैमित्तिक उद्घोषक सुनील चिपड़े ने कहा,
3: आकाशवाणी के 90 वर्षों के जो उत्सव है, दरअसल हम ये शब्दों का उत्सव है, भावनाओं का उत्सव है, जिसे हम मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहा है। 90 साल के सफर में आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता जिस तरीके से रखी है कि तथ्यात्मक बात कहना, सहजता से कहना और लोगों को जोड़ना, तो लोगों को जोड़ते जोड़ते आज हम सड़कों में भी चल करके वॉकेथॉन करके लोगों को और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग हमें सिर्फ सुनते थे लेकिन एक अलग तरह की विजिबिलिटी हम चाहते हैं, उसके लिए हमने आज ये एक वॉकेथॉन किया है और बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। बहुत सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हैं और आकाशवाणी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो लोग जुड़े थे वो आज इस वॉकेथॉन में शामिल हुए हैं, ये हमारी सफलता है।

0: इस अवसर पर महेंद्र साहू ने कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की।
1: 90 बच्चर हो गए हमारे आकाशवाणी के, अजी 90 बच्चर हो गए हमारे आकाशवाणी के, जन जन के वाणी के, लाभ वाणी के, और शुभ वाणी के। संगी हो एक ठीक कहावत है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ए बात ला सार्थक करे आकाशवाणी। जी हाँ, कोनो जगह नहीं पहुँचे, जिन चीज कोनो जगह नहीं, चैतन्य के माध्यम से आकाशवाणी पहुँच जाते, चाहे सूचना की बात हो कि क्रांति।

के बात हो कि मनोरंजन के बात हो कि किसानवाड़ी के बात हो कि खेती की बात हो, निश्चित रूप ले आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराते आकाशवाणी है, रेडियो ला सुनता है। राम राम।

0: इस अवसर पर युवा रेडियो श्रोता वैभव वर्मा ने कहा,
1: 90 वर्ष से लगातार देश सेवा में, जन सेवा में लगी हुई है और इसके माध्यम से न केवल हमने बचपन में मनोरंजन किया बल्कि हमें बहुत सारी चीजें इससे सुन के सीखने को मिली है। बहुत सारी जानकारियां हमको नहीं पता होती थी। रेडियो एक प्रकार से कह सकते हैं हम, भारत अगर चार पैरों में खड़ा है तो एक पैर रेडियो भी है, मेरा ये मानना है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है। आज़ादी से लेकर अभी तक 75 वर्षों में रेडियो में बहुत सारे बदलाव आए हैं, परंतु आज़ादी के दौरान क्रांतिकारियों की भावनाएं आम लोगों तक नहीं पहुंचती और आम लोगों तक जब ये भावना नहीं पहुंचती तो ऐसा अहिंसा का, मतलब बिना हिंसा के आंदोलन करना शायद मुश्किल होता। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि रेडियो न केवल हमारे स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण था परंतु हमारे जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

0: इस अवसर पर वीरेंद्र निर्मलकर ने कहा,
1: स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते बड़े बड़े विद्वत जन मन आके लेकिन मतलब पढ़ाने वाला भी जानकारी यहाँ से होते और कतको लेकिन आकाशवाणी सुन सुन के देश के जिन शासकीय नौकरी में कलेक्टर कमिश्नर बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी घलो बन गए और जब जब उखर इंटरव्यू हम सुनते रेडियो के माध्यम ले तो ये पता चलते कि आकाशवाणी के का लाभ हवा।

0: इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकाशवाणी बिलासपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने वाकेथान में उपस्थित सभी सम्माननीय जनों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने संबोधन में कहा,
1: आदरणीय जिलाधीश महोदय, एसएसपी साहब और सारा हमारा परिवार जो यहाँ आज उपस्थित है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब एक साथ सारे लोगों को देख पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम रेडियो वाले हैं, हमारा माध्यम आवाज है, आवाज के माध्यम से हम पहुँचते हैं, लेकिन दृश्य रूप में जब सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं यहाँ आए हुए हैं तो मन एकदम आह्लादित है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर, और पूरे भारत में जब 1936 में आकाशवाणी शुरू हुई होगी तो सोचिए कि कैसी स्थिति रही होगी देश की स्वतंत्रता के बाद, चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे जन जन तक फिल्मी गीत पहुंचाने की बात हो, शास्त्रीय संगीत को सहेजने की बात हो, या जो भी हमारी कला संस्कृति और जो सामयिक चीजें, चाहे समाचारों की बात हो, रेडियो ही एक माध्यम रहा जो उस समय भारत को एक दिशा दे पाया। लेकिन आज जब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, तो रेडियो भी आज आपके साथ न्यूज ऑन एयर ऐप के साथ आपके हाथ में है, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हमको तो पत्र आज हमें ऑस्ट्रेलिया से भी मिलते हैं, यूएस से भी मिलते हैं, हमारे जो इंडियन लिसनर्स वहां बैठे हैं वो हमें ईमेल करते हैं हमारे प्रोग्राम्स के लिए। तो कितनी बड़ी बात है कि हम अब ग्लोबल हो गए हैं, रेडियो अब ग्लोबल हो गया है, और ये जो स्थिति है कि हर समय रेडियो ने सर्वाइव किया है, इसका मतलब यही

कि हम दृश्यों को जब बोल कर प्रस्तुत करते हैं तो वो एक अलग ही आपको एक मौलिकता देता है। एक आम का पेड़ हर किसी के लिए एक अलग छवि बनाता है। यदि मैं रेडियो पे बोलती हूँ कि एक आम का पेड़ और उसमें चिड़िया बैठी है, तो आप सबके मन में जो आम का पेड़ आएगा वो अलग अलग रहेगा। तो ये जो दृश्यात्मक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता रेडियो आपको देता है, वही उसको इतना इंटरपर्सनल बना देता है। तो यही बात है कि रेडियो आज भी सर्वाइव कर रहा है और आगे भी हमको इसी उत्साह और उमंग के साथ इसको आगे ले जाना है। उसी का प्रतीक है आज का ये वॉकेथॉन, जिसमें कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों ने बड़ी इतने आसानी से 20 दिन पहले ही उन्होंने सहमति दे दी थी कि हम बिल्कुल रहेंगे इस कार्यक्रम में, आप निश्चिंत रहिए। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि प्रशासन भी आज हमारे साथ है और हमें आगे बढ़ा रहा है। और जहाँ तक वॉकेथॉन की बात है, तो हम दिलों को जोड़ते हैं, आज हमने लोगों को जोड़ लिया। आज हम चल रहे हैं, जैसे सुनील ने कहा कि ये चलायमान है, तो हम सब चलकर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसमें पूरी टीम साथ है, जिन सभी ने आज के इस समय में बहुत सहयोग दिया इस आयोजन को सफल बनाने में। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक, मैं तो बोलूँगी किसी का नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि हम सब इतने सारे हैं, लेकिन हर किसी का योगदान श्रेष्ठ है। कि मेरे साथ साथ आकाशवाणी आप बोलेंगे, जन जन की वाणी, बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, आकाशवाणी, और एक और कि हर दिल की आवाज, 90 साल की कहानी, आकाशवाणी। बहुत अच्छा लगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

इस प्रकार आकाशवाणी बिलासपुर में आकाशवाणी की 90 वर्ष की गौरवपूर्ण उपलब्धि पर आयोजित वाकिथान की रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। नमस्कार।

आकाशवाणी के उपलब्धिपूर्ण गौरवशाली 90 वर्ष के अवसर पर आयोजित वाकथन की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे। संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का था और प्रस्तुति थी नेमी चंद साहू की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं आशा भोसले और एसपी बाले सुब्रमण्यम के स्वर में जावेद अख्तर की रचना। आरडी बर्मन का संगीत है और इस गीत को हमने लिया है फिल्म सागर से।

गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म के इस गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ पलों में समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच

0: प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार

0: छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas, including

0: in critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच

0: अभी आपने एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।
1: छाया गीत
2: लग जा गले।
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाय इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा

तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक है वदन का निर्माण, और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। यह नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुबी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है, जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से एक दूसरे

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्ही ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

0: प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।
1: बहुत दूर मुझे जा...

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जा रहा था। 11 बजने को हैं समाचारों के लिए कुछ ही पल में जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिक

वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि

0: आया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। इंडिया एंड इटली टुडे फाइनलाइज्ड 15 आउटकम्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। द अग्रीमेंट्स वर साइंड फॉलोइंग डेलीगेशन लेवल टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and its Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honor to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing report.